ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, तो ये अल्लाह और उसकी आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? हर झूठे गुनहगार पर अफसोस है कि अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनको सुन तो लेता है मगर फिर गुरूर से जिद करता है कि गोया उनको सुना ही नहीं। सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं तो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है, इनके पीछे दोजख है, और जो भी ये करते रहे कुछ भी इनके काम ना आएगा और न वही काम आएंगे जिनको इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, और इनके लिए बड़ा अजाब है।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94
6: Studio 5, an Islamic record label.

हालतुनि खे पीरनि ते दरगाहनि ते छॾे अचनि था। ऐं छा थियो आहे असांजे पंहिंजे मुआशिरे खे, असांजे मुआशिरे खे पुटनि जूं मारूं लाहवारस हुजनि ऐं पीर दरगाहनि असांजा ओल्ड मैन हाउसिस हुजनि ऐं उते वञी माण्हू जेको आहे सो औलाद पंहिंजे पीउ माउ खे छॾे थो अचे। ऐं साईं मुंहिंजा हक़ीक़त जी ॻाल्हि इहा आहे त मां पाण कल्ह न टियों ॾींहुं हिकिड़ो लका पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो त हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे बचड़नि खे वठी करे पंहिंजी फैमिली खे पंहिंजे पुटनि पंहिंजे नियाणियुनि खे वठी करे कराची घुमण लाइ वियो, कराची पिकनिक मल्हाइण लाइ वियो, पर पंहिंजी कुराड़ीअ मड़ खे रक्षे में चाढ़े ऐं चए सो फलाणे जे घर वञ। ऐं जॾहिं रक्षे वारो हुते पहुतो त हुननि हुन अमड़ कुराड़े खे ॾिसी करे हुनजो दरु ई न खोलियो, चई असां वटि रहण लाइ का बि जॻह कोन्हे का। ऐं अफ़सोस सां ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि, अफ़सोस सां अखियुनि मां ॻोढ़ा अचण वारी ॻाल्हि त हुन अमड़ खे रक्षे वारो घुमाईंदो वते पियो, रक्षे वारो रुलाईंदो वते पियो त हुन खे को पंहिंजे घर वठी वञण वारो कोन हो ऐं हू पाण घर खे तालो ॾियूं निकितो हले वियो। त बसि छा चइजे, वधीक के लफ़्ज़ कोन्हनि के, अबो अबो आहे, अमड़ अमड़ आहे। उन लाइ हीउ गीत अव्हां जे नाम पिया कयूं।

जी साईं, मुंहिंजा असांजी गुज़ारत तमामु आसान आहे प्रोग्राम रोशन सुबुह में, ऐं रोशन सुबुह प्रोग्राम मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, त असांजी गुज़ारत आहे त जेकॾहिं खाई वञो त हलाल आहे, जेकॾहिं न खाओ त उहा हराम आहे। ऐं गुज़ारत इहो सुवाल तमामु आसान आहे, तव्हां असांखे सेंड करे सघो था, जेके दोस्त प्रोग्राम हींअर ॿुधनि पिया या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे आन कयो आहे, त उन्हनि नवनि दोस्तनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु थियण लाइ पंहिंजो जेको आहे सो ॾस पतो ॿुधाईंदासीं। त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु तव्हां असांखे सेंड कंदव 888 ते। जेके दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, त फेसबुक जी असांजी आई डी आहे जी एफ एम 88 जी आई डी आहे, तव्हां उन ते असांजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं असांजे मोबाइल नंबर जेको आहे, असांजी जेको सेल नंबर आहे, उहो स्टूडियो में आन आहे, तव्हां असांजे कॉल करे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332 1322888।

0: It's 10 a.m.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जल्दी नाम लेकर तलब कीजिए।
1: अब आप सुनेंगे GAFM
3: के रोकने जलाए कुछ भी न ईरान मुल्क जलाए मिंथू करे रहे है पर हाँ असा गालियों नथा चाहूं ईरान मुल्क आता आहिनि पर असांखे का बि दिलचस्पी न आहे। ट्रंप जो एयरलाइन के लबनान लाइ उॾामनि जी इजाज़त ॾियण जो बि आहे।

ईरान खबरदार कयो आहे त जोहरी हंधनि खे निशानो बणायो हिते में अमेरिका ऐं सरहदनि ते ताक़त सां हमला कया वेंदा। ख़ात्मे लबिया चवण आहे ते हमलो हिते में जंग जो दायरो वधाइण जो सबब बणजंदो। ईरान जो कुवैत जे अली अल सालिम एयरबेस ते लॻल रेडार ऐं टेक्निकल रेडार सिस्टम तबाह करण जी दावा। ईरानी पासदारनि इंकलाब जो चवण आहे त बोविया जज़ीरे ते मौजूद हिकु वरी निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। जहारियत कंदड़नि खे सज़ा ॾियण लाइ ऑपरेशन जारी आहे।

0: He said that Donald Trump website to buy the Jeevan America.
1: अमेरिकी अखबार मुझे वायदे तहत सिविल एटमी तवानाई शोबे में ये भागीदारी कायम कई भी नहीं वायदो मंजूरी जायदे जला अमेरिकी कांग्रेस के सामू पेश कर भी दो
2: पेट्रोल 4 रुपया 98 पैसा मांगो डीजल फी लीटर 7 रुपया 15 पैसा इजाफो उगरा नोटिफिकेशन जारी कर छो पेट्रोल जो नव अघ 320 रुपया 73 डीजल जो 9 रुपया 360 रुपया 1 पैसा फी लीटर मुकरर ओग्रा स्टेशन मोज 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपया डीजल ते तकरीबन 75 रुपया आहे
1: ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन सॼे मुल्क में हड़ताल ऐलान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन अॻवान नौमान अली भट चयो आहे त रोज़ाना जे बुनियाद ते पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में तब्दीली कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे हुकूमत सां ॻाल्हियूं आहिनि तूं माहवार बुनियाद ते तय कयूं वञनि अॼु राति 12 वॻे खां मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंदि कया वेंदा वज़ीर आज़म जे कोआर्डिनेटर इख़्तियार वली जो चवणु आहे त मालिकनि खे ॻाल्हियुनि जो मामला तय थी वेंदा
2: खिपरो में फुर मज़ामत कतल थियल भेरू कोहलीअ जो लाश रखी धरणो गुज़िरियल ॾींहं खां आहे धरणे वारे हंधि न चूंडियल नुमाइंदो पहुतो एसएसपी हमीर फ़क़ीर वोट लॻल धरणे में ॿार ऐं औरतूं समेत सिविल सोसाइटीअ जा माण्हू बि शरीक

और गुलाम मोहम्मद वेझो मज़दा ऐं मोटरसाइकिल में टकर, ॿजणा फौत, हिकु ज़ख़्मी। ॾह मेल मोरी चेकपोस्ट वटि मज़दा ऐं मोटरसाइकिल में आम्हूं साम्हूं टकर, मोटरसाइकिल सवार अली हसन जत ऐं रबर ॾिनो मंगण हार फौत, शाह ॾिनो मंगण हार सख़्तु ज़ख़्मी।

0: न्यूज ऐं कावश पारां हिकु वण सिंध अमर जे नाव जे उनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान। 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारी मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी। मुहिम दौरान पंहिंजे घर पाड़े शहर पार्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो बूटो पोखे सिंध अमर खे तोहफ़ो ॾेई सघिजे थो। हुन बूटे जी सार संभाल जो वचन बि कयो वेंदो। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमनि शागिर्दनि औरतनि समेत माहौल दोस्त धुरियुनि खे सदका जारिया में भरपूर शिरकत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
8: 03013992836।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite Nai Motorcycle Ji Sale. कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर. सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो. कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120.
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात. नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94.

जी सेवन जा असांजी जेके गुजारत आहे, असां जेको सवाल आहे उहो आहे त खाई वञो त हिलाल आहे, न खाओ त हराम आहे, यानि खाजाए तो हिलाल आहे, नहीं खाएं तो हराम आहे। साईं जा असांखे इन सवाल जो सही जवाबु अञा मोकिले सघो था, असांजे इनबॉक्स में तव्हां मोकिले सघो था। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव, उन बाद में तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ नालो, सवाल जो सही जवाबु 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था। ऐं जेके दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, उन लाइ GFM88 जी आईडी आहे, त हुन ते बि असांखे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे, तव्हां हुन ते कॉल करे पंहिंजो नालो लिखाए सघो था, सवाल जो सही जवाबु। असांजो नंबर आहे 0333-2-1-3-2-2-8। जी हा, 0333-2-1-3-2-2-8 असांजो नंबर आहे। ऐं साईं जा कुझु दोस्तनि जा नाला बि खणंदा हलंदासीं जिन असांखे सही जवाब मोकिलिया आहिनि, छो त गुजरात सवाल असांजो आसान हुयो। जी हा, समेन असांजे सवाल जो सही जवाबु मोकिलियो मुमताज़ तुनियो, सिराज अमन तुनियो, शहर मीरो खान खां, नज़ीर अहमद मंगरियो, रोहिड़ी सखर खां, ऐं सोरा भाजी सोरा मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो, घोटु सचेरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, ऐं इज़हार हुसैन शेख पुराणो सखर खां, अली गुल मीराणी बि सखर खां, ख़ालिक लाशारी ऐं इक़बाल लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, फ़क़ीर महरम जतोई आगा खान जतोई खां, लियाकत अली खखराणी मोहसिन अली अहसन अली खखराणी लाड़काणे खां, समीर लाइ रिंद पंहिंजो ॻोठ जो नालो कोन लिखियो हो, ऐं यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां, हाफ़िज़ नईम लाइ, हाफ़िज़ अमीनुल्लाह, हाफ़िज़ अहसान उल्लाह पनियागल खां, फ़ौजी पठाण खान खोसो फुलजी स्टेशन खां, ऐं मोहम्मद कासिम पहंवर बि फुलजी स्टेशन खां प्रोग्राम ॿुधे पियो, भाउ जी वॾी महिरबानी। मुनीर अहमद जूणे जो ॻोठु ठुल जूणे जो खां, ऐं ग़ुलाम सरवर सुमरो, ज़ाकिर हुसैन अरशद सहतो ॻोठु गॾेजी लाड़काणो खां, हाफ़िज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद, सदाम हुसैन रिंद ॻोठु जीअंद रिंद जेकबाद खां, फ़तेह मोहम्मद कनासरो, फराज़ अहमद, फारूक अहमद ऐं बेबी शगफ़्ता नाज़ कनासरो ॻोठु सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां, ऐं नूर अहमद सोलंगी, नूरो सोलंगी, अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, मीरपुर ख़ासि खां। ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। ख़ूबसूरत नगमो आहे फ़ौज़िया सुमर जे आवाज़ में, अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं।

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं। अव्हांजा नाला लिखूं पिया, अव्हांजा सवाल जा जवाब लिखूं पिया, कॾहिं बि न वञिजो, वरी वापसि ईंदासीं। हलूं पिया हिन वक़्तु कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

चेतो हुसन वारा हुसन पाजो, हुसन वारा हुसन पाजो, करे जाहिर नहीं दो कर, करे जाहिर नहीं दो कर, लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न कोताही, लिखण में थे न कोताही।

जी साईं मुंहिंजा जी समय जा ॻाल्हि कंदासीं परदेस जी, पर जॾहिं कंहिं कमकार सां खे, कंहिं महिनत सां खे, कंहिं रोज़गार सां खे पंहिंजो प्यारो माण्हू वतन छॾे असांजे दिलनि खां धार थींदा आहिनि, त पहिरीं महसूसु ईअं थींदो आहे त कंहिं कूंज वांगुरु याने वलर खां हवा विछड़ी वञे। ज़मीन आसमान खां पिया ॻाल्हाईंदा आहियूं त पहिरीं प्यारा परदेस हलिया विया, ऐं परदेस लफ़्ज़ ॿुधण सां दिलि मां तिखा तीर निकिरी वेंदा आहिनि। साईं मुंहिंजा, देस जी जेका मिटी आहे, जेका ख़ुशबू आहे, उहा तमामु बहितरीन आहे, जेका परदेस में किथे बि नाहे। परदेस में असांखे जॾहिं वतन वारा पहिरीं प्यारा दोस्त यादि ईंदा आहिनि, मिट माइट यादि ईंदा आहिनि, उन महिल असांजी दिलि तमामु घणो मायूस थी वेंदी आहे।

जी साईं मुंहिंजा, असांजी हिन हफ़्ते जी गुज़ारत, हिन हफ़्ते जो जेको सुवालु हो त खाऊं त हलाल, न खाऊं त हराम, बिल्कुलु हिन जो सही जवाबु आहे कावड़ गुसो। ऐं जेको माण्हू कावड़ कंदो आहे, गुसो कंदो आहे, त उहो हराम आहे, पर जेकॾहिं उनखे खाई वेंदो त उहा हलाल आहे। काफ़ी दोस्तनि जा सही जवाबु आया हिन दफ़े। असां सभिनी खे मुबारक ॾींदासीं, जस ॾींदासीं त शाबस आहे दोस्तनि। काफ़ी जेको आहे सो तक़रीबन सभिनी सवालनि जा सही जवाब न, पर हिकु अधु दोस्त आहिनि बसि उनखे उन कुणे में खणूं था जिन सवाइ सही जवाबु न ॾिनो आहे। त असांजा दोस्त आहिनि असगर अली शंबाणी, मुजाहिद अली शंबाणी ऐं अब्दुल लतीफ़ शंबाणी, राजा मुज़फ़र शंबाणी, ॻोठ दादन खान शंबाणी मीरापुर खां, ऐं मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरे जी बलोचिस्तान खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं ॻोठ मोल ॾिनो माछी लॻे वॾनि मरण खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ हसू जतोनि खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद नसरुल्लाह जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर चांडियो, अहसन अकबर, फहद अकबर ऐं अहद अकबर, शादाब चांडियो। ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाफ सखर लॻे सब्ज़ी मंडीअ खां, एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, इरशाद अली महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार अहमद जतोई। ऐं दोस्त आहिनि चनेसर बेहण, आज़ाद बेहण मोरे खां, इन साईंनि खे बि जवाबु न आयो। ऐं नज़ीर अहमद खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, इन बि सवाल जो जवाबु कोन लिखियो। ममन साली लिगारी, लाल बख्श लिगारी, बिलावल लिगारी, ओसामा लिगारी, लटको मोरी सांगड़ खां, इन दोस्तनि में जवाबु कोन ॾिनो। रेहान खान बखर खां, इन बि सही जवाबु कोन ॾिनो। ऐं आशिक अली ख़ासि अली नवाबशाह खां, इन बि सवाल जो सही जवाबु कोन ॾिनो। ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि खेली झंडो मरी खां, भाउ जो त सही जवाबु आहे मच्छी, मच्छी जी खाओ त हलाल आहे, न खाओ त हराम आहे, इन भाउ जो इहो जवाबु हुयो। हाफिज़ मुनीर अहमद खोसो लाड़काणे खां, मुनवर अली मुग़ल मीरपुर ख़ासि खां, मोहम्मद ख़ान कुंभार जमाल खान ऐं मोहम्मद अली कुंभार हाले पुटा स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। ऐं आख़िरी कलाम सभिनी दोस्तनि जे नाम।

जी साईं मुंहिंजा हुमेरा चन्ना जे इन ख़ूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची पियो पंहिंजे भुॼाणी ते हयाती रही त इनशाला वरी अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निकाबा।

अमेरिका जा ईरान ते यारहें ॾींहं में हमला। अमेरिकी सेनेट काम दावा कई आहे त ईरानी शहर तबरेज़ वेझो फौजी हंधनि ते फिज़ाई हमिलो कयो वियो। सीरक ऐं ॿियनि सामूंडी इलाइक़नि खे बि निशानो बणायो वियो। तेहरान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। ईरान जो चवणु आहे त अमेरिकी कार्रवाइयूं जारी रहण ताईं अपना हरमुज़ बंदि रहंदो। अमेरिकी सदर तंज़ जे जबलनि में ईरानी एटमी मर्कज़ ते हमले जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तमामु इलाइक़े निशानो बणायो वियो। इहो हमिलो जल्द थींदो। ईरान इन हमले खे रोकण लाइ कुझु बि नथी करे सघंदा। ईरान लाइ मिंथू करे रहियो आहे पर हाणे असां ॻाल्हियूं नथा चाहियूं। ईरानी मुलाक़ात करण लाइ आता आहिनि पर असांखे का बि दिलचस्पी नाहे। ट्रंप जो एयरलाइंस खे लिबनान लाइ उॾामनि जी जो बि ऐलान।

0: ईरान खबरदार कयो आहे त जोहरी हंधनि खे निशानो बणायो वियो त खे में अमेरिका ऐं संदसि इतादिन ते ख़ात्मो नबी चवण आहे त जोहरी हंधनि ते हमिलो खिते में जंग जो दायरो वधाइण जो सबबु बणजंदो। ईरान जे कुवैत जे अली एयरबेस ते लॻल रिडार ऐं टेक्निकल रिडार सिस्टम तबाह करण जी दावा इनकलाब जो चवण आहे त बूबियान जज़े ते मौजूद हिकु वधीक रेडार निज़ाम खे बि निशानो बणायो वियो। जहारियत कंदड़नि खे सज़ा लाइ ऑपरेशन जारी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब सां एटमी मुआहिदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा अमेरिकी अख़बार मौजूद मुआहिदे तहत सिविल सोसाइटी तवानाई शोबे में ढिघे भाईवारी मुआहिदो जाइज़े अमेरिकी कांग्रेस सां पेश कयो वेंदो। पेट्रोल पंप्स मुल्क में हड़ताल जो ऐलान। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन अॻवान नोमान अली चयो आहे जी बुनियाद पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमत में तब्दीली कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। हुकूमत सां ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि। क़ीमतूं माहवार अॼु राति 12 वॻे खां सॼे मुल्क में पेट्रोल पंप्स बंदि कया वेंदा। वज़ीर आज़म जे कोर्डिनेटर इख़्तियार वली जो चवण आहे त पेट्रोल पंप्स मालिकनि खे ॻाल्हियुनि लाइ घुरायो आहे, मामला तय थी वेंदा। एपीके में बरसाति तबाही मचाए छॾी। 14 ॼणा फोत, 19 ज़ख़्मी। पीडीए में मौजूद 19 जुलाई खां जारी बरसाति ने फ्लैश फ्लड्स जे नतीजे में 11 मर्द, 4 औरतूं ऐं 4 ॿार हयातियूं विञाए वेठा। बरसातनि सबबि 28 घरनि खे नुक़सान पहुतो, 22 घर जुज़वी तौर तबाह थिया। सखर जे साइड एरिया थाणे जी हद में मुड़ाल खे गुटा ॾेई क़तल करे छॾियो। लेबर कॉलोनी फ्लैट्स में जवाबदार गुलाम शबीर शेख शबाना शेख खे गुटा ॾेई क़तल करे फरार थी वियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार ज़ाल खे घरू मामले तां गुटा ॾेई क़तल करे फरार थी वियो। गिरफ़्तारीअ लाइ छापा हयां पिया वञनि। किपरो में फुर मज़ामत ते क़तल थियल भेरू कोहलीअ जो लाश रखी लॻल धरणो गुज़िरे ॾींहं खां जारी। धरणे वारी हंधि न चूंडियल नुमाइंदो पहुतो, न SSP हमीर फ़क़ीर वटि। लॻल धरणे में ॿार ऐं औरतूं समेत सिविल सोसाइटीअ जा माण्हू बि शरीक। बोह जे वापारियुनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ सॼे सिंध में 3 ॾींहं बि हड़ताल। कराचीअ में शदीद खोट थी वई। मलीर में वापारियुनि जो एहतजाज मुज़ाहिरो कयो त पुलिस बार करण बि नथी ॾे। हिकु हिकु चौकीअ ते 5 खां 10 हज़ार रिश्वत वरिती पई वञे ऐं तशदुद बि कयो वञे थो। कराची पहुचण ताईं हिकु गाॾीअ जे मालिक खे 50,000 रिश्वत ॾियणी पवंदी आहे। वधीक तंग कयो वियो त नेशनल हाईवे ते धरणो हयो वेंदो। ऐं KTN न्यूज़ ऐं कावश पारां हिकु वण अमर जे उनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान। 24-31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारी मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी। मुहिम दौरान पंहिंजे घर, घिटी, पाड़े, शहर, पार्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो ॿूटो पोखे सिंध खे तोहफ़ो ॾेई सघिबो। उन ॿूटे जी सार संभाल जो वचन बि कयो। समाजी तंज़ीम शागिर्दनि, पोरेतनि, उस्तादनि समेत समूर वण पोखण वारो सदके जारिया में भरपूर शिरकत जी दावत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0320180003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नो दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा
4: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मजे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

रुको, हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते. अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम. यू आर शेयरिंग इंटरटेनमेंट रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज. हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप चुकी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टॉप बिल्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं. जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं. पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM. आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक. प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20, जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है. तमाम तरह लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी. बट एट द नेवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. बस खुदा खैरियत मौजूद और दवा के लिए खुदा खैरियत.

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो ज्ञान मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला कलाम, और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. स्टे ट्यून्ड.

0: सक्खा। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड में रापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: से आपका प्रोग्राम सुनती हूँ रेडियो पर।
1: रेडियो पर? सॉरी,
0: कान लगा कर सुनती
1: हूँ। कान लगा कर सुनती हैं? अरे वाह, तो रेडियो पे, रेडियो पे सुन रही होती हैं?
0: जी जी, रेडियो पे इतना बड़ा लगाया हुआ है, चलाती हूँ सब प्रोग्राम करती हूँ।
1: बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पहले सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं समझ पा रही।
0: अभी
1: अच्छा, आज नहीं आ रही? कहाँ पे नहीं आ रही? चले ये हम देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही, और इसको हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ओके जी। और जीशान रोकड़ी का गाना मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा गाना मिल जाए, और हम प्ले करेंगे जीशान रोकड़ी का एक अच्छा सा गाना। और अभी शायद मैंने सर्च करके सामने भी देखा था, मतलब मैंने उसको लाइन अप करके रखा था, लेकिन होता है ना कि जिस चीज़ को आप जिस टाइम पे ढूंढ रहे हो वो उस टाइम पे मिलती नहीं है। शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन खैर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सर्च करेंगे और 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर ले लेंगे। तब तक हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, नाम बताइएगा।
2: अजीज सोलंकी।
1: अजीज सोलंकी, कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे
2: जी? और जी प्रोग्राम बता दो, गाना बुलाए तो मतलब सुनाना जब।
1: गाना सुना दे
2: वो कैसे भी ऐसे बीते उमरिया दिल पे साथी मेरे।
1: ओके, किसका गाना है
2: ये? मसरूर गाना जो है भाई।
1: ओके, हम प्ले करते हैं जी। किसी को डेडिकेट करना है?
2: खाल कलाचारी ने दिल उतरा दिया, तो पार पास के लिए अभी जरवार गया।
1: चलें जी, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, कॉल भी ड्रॉप हो चुकी है जी साथ साथ। और हियर कम्स द सॉन्ग ऑफ ज़ीशान रोकड़ी।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359210।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी

0: 之后，不是泪干喉，叫你我怕苦，我不知几山河，जल वे तुम्हारे हो के तारों से कम दुनिया किसी के सारे
1: अदर अदर
2: ओके जी. और किसी को डेडिकेट करना है?
0: नहीं डेडिकेट करना, जो कोई नहीं था.
2: ओके जी, फिर थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. ये रहा गाना.

आओगी जी. इसी के साथ हम गाना भी चेंज करेंगे और आगे चलेंगे हमारा सेगमेंट जो कि 12 बजे के बाद होगा, जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान. ठीक है जी. और एवरी वेनसडे और थर्सडे वाले दिन हम 12 बजे के बाद वो सेगमेंट कर रहे होते हैं, तो आज भी हम वो सेगमेंट करेंगे और हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे. ठीक है जी. तो एक और गाना प्ले करेंगे. गाने के साथ हम न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, क्योंकि आज सखर का मौसम कुछ खासा अच्छा है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मौसम वाला गाना प्ले किया जाए, कोई अच्छा सा रोमांटिक वाला गाना प्ले किया जाए. तो फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे. अगर तो मैंने सही कहा है, अगर तो ये इसी तरीके से है. ठीक है जी. तो इस गाने के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों की जानिब, और फिर हम वापस आएंगे. और वापस आने के बाद हमारा सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आसियान इजलास में शिरकत के लिए फिलिपाइन के शहर मनीला पहुंचने लाए वजीर आजम इसहाक डार परदेही वजीर से मुलाकात विपन लगपन समेत खिते की सूरत हाल से गालू बिन्हीं अगवान पाक रूस के मजबूत बनाए खिते की सूरत हाल से रातन में पाक

0: अमेरिका जा ईरान ते 11 दिन पे हमला अमेरिकी सेंटकॉम दावा किया है ईरानी शहर तबरेज वेझो फौजी ते फजाई हमलो कयो वियो शहर के बियन इलाकन निशानो बनाए वियो ते जे मुख्य इलाकन में भी धमाकन जा आवाज बुधा वया ईरानी फौज दा भी जवाब में अमेरिकी दन ते हमला बाजारन इंकलाब मुजब कुवैत में अमेरिकी फौज जे दोहा गिरदन के ड्रोन ए मिसाइल निशानो बनाए
1: सखर में मुड़स जाल के घुटा डेई कतल करे छड़ियो लेबर कॉलोनी फ्लैट्स में जवाबदार गुलाम शबीर शेख शबाना शेख के घुटा डेई कतल करे पुलिस जो चवणा है जवाबदार जाल के गरू मामले ता घुटा डेई कतल कयो है जवाबदार जे गिरफ्तारी लाए छापा हया पया वञन
0: खिपरो में गुजर डी फुर मदामत ते कतल थियल पर भेरू कोली जे वारसन जो लाश सुधो बे डी भी थणो जारी धरने में बार औरतन समेत सिविल सोसाइटी जा मानू भी शरीक इलाके जो को भी चूंडल नुमाइंदो मुतासन तपतो मुजाहिरिन जो जवाबदारी धरनो जारी ऐलान
1: सिंध में पानी के खिलाफ मुजाहिरन ने धरना जो सिलसिलो जारी सर्वे जो गोठाड़न जो पीण के पानी के कोट खिलाफ थाम खड़ी मुजाहिरो धरनो गोठ शाहणी के रहवासी नथन में थाव खड़ी एहतजाज कर पानी फराम करने मुतालबो हैदराबाद में सिंध के पानी के धाड़े खिलाफ अवामी तहरीक पारा एहतजाजी रैली कड़ी वही
0: रेलवे फाटक लाश वाकई हंध पहुंची लाश अस्पताल डॉक्टर ख्वाजा सराज मौत तबी थी सके तो जिस्म ते तशद्दुद आहिनि।

0: Aoki ji, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और वापस आ चुके हैं एक अदर ब्रेक के बाद. और हमारा सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. और ये सेगमेंट आप सुन रहे होते हैं स्पेशली वेनसडे और थर्सडे वाले प्रोग्राम में 12 बजे के बाद. तो आज भी हम ये सेगमेंट कर रहे हैं. और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका अगर मैं तारुफ करवाऊँ आपके साथ, तो आज के हमारे गेस्ट हैं सैयद यूसुफ अली शाह, जो कि प्रेसिडेंट है ऑलिव फाउंडेशन पाकिस्तान के. इस वक्त हमारे साथ लाइनअप है, लाइन पे मौजूद हैं, एग्जैक्टली लाइव हैं. तो इनको कहेंगे कि खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम बेटा, थैंक यू
0: जी. अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद यूसुफ अली शाह साहब, आप कैसे? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं
1: जी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: ओके जी, सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू यू कि आप इस वक्त हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं और लाइव हैं.
1: जी बेटा, मुझे भी फख्र है. ठीक है कि इस पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं कि जो हो सके, कि कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका जो जरे मुबादला ठीक है बचा सके. ठीक है, ये आयल की सूरत में हम जो बाहर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो इस मुल्क में पैदा हो, हम बाकी जो है ना ममालिक को दें, ठीक है, तो इस जरे मुबादला को बचा सके, इसी कावश में लगे हुए हैं. तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी इसमें हिस्सा लिया. ये जैतून है तो जैतून पे आप भी काम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआई कर सकता हूँ और अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर आप लोगों को भी नेमल बदल देगा नेकियों की सूरत में. थैंक यू.
0: आमीन सुमा आमीन. और थैंक यू सो मच. और सैयद यूसुफ अली शाह साहब, स्पेशली आज हम ऑलिव के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलिव एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ऑलिव के बारे में बताइए कि ऑलिव है क्या और इसकी अहमियत क्या है.
1: अच्छा, ये ऐसा है कि ये एक दरख्त है, ठीक है, ये एक दरख्त है और इससे जो फल हासिल होता है ये एक सुपर फूड है. और कुरान व हदीस की रोशनी में अगर देखें तो 7 जगह कुरान में भी इसका जिक्र है. अल्लाह ने सूरत नूर को अगर इसकी जाप जो है ना अगर स्टडी करें, तफसीर इसकी फजीलत अगर इसकी देखें, तो ये मसलन अल्लाह ताला ने नूर से इसको तशबीह देता है कि वो मिसबा चराग का जिक्र और उसमें जो है ना जैतून का तेल डाला जाए और उसको आग जलाई जाए, लगाई जाए, तो उससे जो रोशनी पैदा होगी अल्लाह ताला उसको अपने नूर से तशबीह देते हैं, पहली बात. ठीक है, और वो शर्कन और गर्बन का जिक्र. ठीक है, तो मुख्तसर यह कि कुरान में भी फिर हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह माफ करे कमी बेशी उसमें, कि उसमें आता है कि ये 70 बीमारियों के लिए शफा है. ठीक है, तो अगर हम सारे लगे रहे ना तो 70 बीमारियां काउंट करें तो हो सकता है एक माह भी लग जाएगा, तो हम 70 बीमारियां नहीं नोट कर सकते. जो उलमा लोग हैं, जो मुफ्ती लोग हैं, वो फरमाते हैं कि अक्सर बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं. और मैंने तो खुद मसलन पिछले 40 साल इस पे काम करते हुए इस दौर में मैंने खुद देखा कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हमारी मिसाल के तौर पर कैंसर की सूरत में है, शुगर की सूरत में है, हार्ट की सूरत में है, ठीक है, कोलेस्ट्रोल है, यूरिक एसिड है, मसलन इस तरह की जो बड़ी बीमारियां बवासीर की सूरत में, बस वो इससे ठीक होती देखी. ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हमारे आने वाली जो नस्ल है, बच्चे हमारे बीमार है, अगर इनके खानों में अगर हम इस जैतून का इस्तेमाल करें तो एक हेल्दी फूड होने के निस्बत से जो है ना उनकी सेहत अच्छी हो सकती है. हम अस्पतालों से बच सकते हैं, हम गोलियां और टीकों से बच सकते हैं, अपने बीमारों को बचा सकते हैं. तो इसको माशरे में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. और दुनिया 500 साल 600 साल से जो है ना इस पे काम कर रही है. हम तो अभी शुरू हुए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुख सही है, ठीक जा रहे हैं हम. ठीक है, अभी तो ये कि हम जो है ना ये 2025 में जो ओले वाले ममालिक हैं उसमें हमारा भी शुमार कर दिया गया. ये 26 में जो है ना अनाउंसमेंट हो गई है, पाकिस्तान जो है ना ओले वाले ममालिक में शामिल हो गए. तो इस जो है ना हमें बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे और इसके साथ साथ जो है ना हमारे जो है ना लोग इसको अभी इस्तेमाल में ला रहे हैं, घरों में जो है ना इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें बहुत से फायदे मिलेंगे, बहुत सी हमारी डिजीज कम हो जाएंगी हमारे माशरे में. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے بہت سے بینیفٹ ہیں.
0: یہ
1: ہم جو معاشرہ ہے ہمارا اس تک اگر یہ ہماری آواز جس طرح آپ لوگ ابھی آپ نے بھی آپ لوگوں نے بھی شروع کی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے گی، وہ بھی اپنے مائیں خصوصی طور پہ اپنے بچوں کی غذا میں اس کو شامل رکھیں، تو وہ انشاءاللہ اچھے قوم کے معمار بنیں گے. ٹھیک ہے، اچھی صحت ہوگی ان کی. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو.
0: اوکے جی، اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ ہمارے سننے والوں کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تک اولیو کا استعمال اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اولیو کا استعمال ہم کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی ہیلپ فل رہتا ہے اولیو، تو اس کا استعمال ہم کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں، ہم اس سے کیا کیا بنا سکتے ہیں؟
1: پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو خالص لیا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، عموماً لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جی مجھے خالص تیل نہیں، میرا خالص تیل نہیں ہے جی، ملاوٹ ہے ملاوٹ ہے. لیکن لوگ خود کیا کرتے ہیں، خود یا تو دودھ میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ملاوٹ ہو گئی، کھانے میں لیتے ہیں وہ بھی ملاوٹ ہو گئی، بس ان خود وہ خالص نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو میری جو رائے بھی ہے یا میری جو ایڈوائز تجویز ہے، ٹھیک ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ اس کو خالص لیں. اگر شوگر کا پیشنٹ ہے تو 2 چمچ صبح خالی پیٹ لے، لیکن اس نے پہلے پانی بھی نہ پیا ہو، بالکل خالی پیٹ ہو، اور پھر وہ 1 گھنٹہ کچھ کھائے پیئے نہ، تاکہ اس کو خالص بالکل جسم میں ڈیزالو ہونے دے، تو اس کو اچھے ریزلٹ ملیں گے. اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان اگر شوگر پیشنٹ ہے تو دوبارہ پھر 2 چمچ یہ لے لے صبح اور شام، ٹھیک ہے تو اس کو اچھے ریزلٹ ملیں گے. بے شک وہ 1 مہینے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروا لے، آہستہ آہستہ اپنی جو اس کی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں شوگر کی تو اس کو جو ہے نا کم کرتا جائے، تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کو اچھے ریزلٹ مل جائیں گے. اسی طرح ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کو 2 چمچ کے ساتھ جو ہے نا لیمن کا جوس مکس کر کے، ٹھیک ہے تھوڑا بلینڈ کر لے کسی کپ میں ڈال کے 2-2 چمچ، اور اس کو جو ہے نا وہ لے لے صبح اور شام، اسی طرح وہ بھی لے لے تو اس کو اچھے فائدے ملیں گے. باقی جو ہے نا وہ بچے ہیں چھوٹے، نمونیا کی صورت میں ہیں، تو 1-1 2-2 ڈراپ کی صورت میں ان کے منہ میں ڈال دیے جائیں تو اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح مثلا پائلز والا ہے تو اس کو جو ہے نا زیادہ 3-4 چمچ لینی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے لے لے. اور خاص طور پہ جو زیادہ کھانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد آئل نہ لیں، بہتر ہے کہ وہ پہلے لیں، مغرب سے پہلے لے لیں، عصر کے بعد لے لیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ بعد کھانا کھائیں تو اس کو اچھے ریزلٹ ملیں گے. مختصر یہ ہے کہ مختلف ہے نا وہ بیماریوں کے لیے جو ہے مختلف طریقے سے لیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ خالی پیٹ اور خالص جو ہے نا وہ لے تو اس کو بینیفٹ زیادہ ملے.
0: اوکے جی، اچھا اس وقت
1: اس میں اس میں ایک آپ کا آخری کوشچن تھا نا کہ کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں، تو اس وقت تک تو 56 چیزیں تو ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی 18-20 چیزیں ہمارے پاس کاسمیٹکس کی ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں اچار ہے، اس کا مربع ہے، جیم ہے، اس کی شربت ہے، زیتون کا آئل ہے، پھر اس کے مختلف فلیور میں ہم اس کا فروٹ بناتے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ رکھیں اور اس کو کھائیں. ٹھیک ہے، اس کی اولیو کی ٹی ہے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، ہماری خصوصی طور پہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو اوور ویٹ ہیں، فیٹی لیور ہے، ٹھیک ہے ہمارے جو بزرگ ہیں فیٹی لیور ہے، ان کے لیے یہ سونا ہے. اور خاص طور پہ جب ایک ہماری ماں بہن جو ہے نا وہ جب اس کے میں چینجنگ آتی ہے اباؤٹ 50 تو اس میں جو موٹاپا پن آتا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اولیو ٹی اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے، بس اس میں سے جو ہے نا اس کا جو فیٹ ہے وہ نکالتی ہے. تو مثلا یہ ہے کہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا، وہ لب اتنی وہ ٹی مہنگی بھی نہیں ہے اور بینیفٹ اس کے بہت زیادہ ہے.
0: اوکے جی، میں بالکل اسی طرف آ رہی تھی کہ اس وقت پاکستان کے کن کن علاقوں میں اولیو آسانی سے پایا جاتا ہے، وہاں پہ سیل کیا جاتا ہے، اور اگر سیل ہوتا ہے تو اس کی پرائزز کیا ہیں؟
1: इसमें बेटा जो इस साल का हम रेट दे रहे हैं 300 रुपए पर केजी, जो मोटे साइज में है, जिसको हम टेबल वैरायटी कहते हैं, जिसको बस आप टेबल पे बैठ के खा लें अचार की सूरत में, मुरब्बे की सूरत में, इसका जो रेट इस दफा फाउंडेशन ने दिए 300 रुपए पर केजी के हिसाब से। और जो जरा छोटे साइज की होती है जिसमें ऑयल कंटेंट्स ज्यादा होते हैं उसको ऑयल वैरायटी कहते हैं, तो उसका रेट हमने 200 रुपया दिया है। ठीक है, ये इस साल का, पिछले साल 170 और 270 रुपए था, इस दफा हमने 30-30 रुपए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, बाकी रह गया पंजाब। ठीक है, ये कलर कार से ऊपर जो वादी है पिंडी तक, ठीक है, इसमें अटक भी शामिल है, चकवाल भी शामिल है, जैलम भी शामिल है, खुशाब का कोई मियां वाली का कुछ एरिया ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें काफी पाया जाता है। फिर इसके साथ साथ बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, इसमें मूसा खेल है, डिस्ट्रिक्ट मूसा खेल है, खुददार है, लोरा लाई है, ठीक है, इस तरह के 4-5 डिस्ट्रिक्ट उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ केपीके में काफी सारा है, कश्मीर का काफी सारा एरिया इसमें है। तकरीबन इस वक्त ये 1 करोड़ से ज्यादा पौधे जो है ना लग चुके हैं। ठीक है, और लगाए जा रहे हैं, और पंजाब हुकूमत खास तौर पे उसने बहुत जबरदस्त जो है ना एक पैकेज दिया है आवाम को। ठीक है, कि अगर कोई भी लगवाना चाहिए और छोटा फार्मर है तो उसके लिए भी इन्होंने पैकेज दे दिया है मरियम नवाज बीबी ने, कि 5 एकड़ तक भी अगर किसी के पास जमीन है वो लगवाना चाहती है तो हुकूमत जो है ना उसमें उसकी मदद कर रही है। खासतौर पे जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, पानी का जो सिस्टम लगाने का होता है, हाई एफिशिएंसी सिस्टम, वो उसमें भी 70% दे रही है। 30% जो है ना फार्मर का शेयर है इसमें। अगर वहां पे नहीं है सोलर, बिजली नहीं है, तो उस जगह जो है ना सोलर सिस्टम भी इसी तरह 70% जो है ना गवर्नमेंट दे रही है, 30% जो है ना वो फार्मर का हिस्सा है। तो उसमें पौधे भी काफी जो है ना, जो 700-800 का पौधा है वो 100 रुपए का दे रही है। तो इसी तरह जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है उसका भी बहुत बड़ा एक जो है ना वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो भी इसी तरह 93 रुपए का एक पौधा दे रही है, और बाकी सिस्टम भी इसी तरह वो भी दे रही है। ठीक है, तो उसमें बलूचिस्तान में भी बहुत से, तकरीबन इस वक्त 35-40 लाख पौधा जो है ना वहां पे भी लग चुका है। पंजाब में भी 35-40 क्रॉस कर गया है, फिर केपी के वो भी 40 लाख तकरीबन क्रॉस कर गया है। कोई 50 हजार तो इस वक्त सिंध में लग चुका है, 50 हजार से ज्यादा गलगित जो है ना बलूचिस्तान में लग चुका है। इसी तरह कश्मीर भी जो है ना तकरीबन 1 लाख से ज्यादा, और खास तौर पे कश्मीर साइड पे जो हमारे तो देसी है कऊ के नाम पे जो जैतून है उसको ग्राफ्ट किया जा रहा है। केपीके में बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग हो चुकी है। तो बस इस पे जो हमारी हुकूमतें हैं वो काफी काम कर रही हैं, और उसके लिए जो है ना काफी वो बजट जो है ना मुख्तार कर रही हैं। इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके इस प्रोग्राम के तौर से, कि खास तौर पे जो हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत है और केपीके की जो हुकूमत है वो भी कोई पैसा जो है ना इसके लिए अलग रखे, इसकी जो कऊ की ग्राफ्टिंग है उसके लिए, या जैतून के लिए जिस तरह एक पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में ऐसा डाला है इसका जैतून का तकरीबन 7 अरब रुपए का। ठीक है, तो इस तरह इन हुकूमतों को भी, कश्मीर हुकूमत को भी और जीबी वालों को भी चाहिए कि कुछ इसके लिए मुख्तस करें, ताकि जो है ना ये बेहतर अंदाज में आगे चल सके। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हो सकता है हम जैसे बाबे ना भी हों, हमारे आने वाली नस्लें जरूर देखेंगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जैतून में नंबर 1 होगा। और 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह के सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान ने लिया। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी जो है ना वो जमीन है, बड़ी अच्छी आबो हवा है। ठीक है, तो हम बेहतर आयल जो है ना दुनिया को दे सकेंगे इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में सुनने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे छोटा सा?
1: बस मैं जो हमारे फार्मर भाई हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि वो जरूर जो है ना जैतून की तरफ आए, खास तौर पे वो जमीनें जो गैर आबाद है उनकी, तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से ये अच्छी जो है ना आमदनी ले सकते हैं। ठीक है, और मैं उन सनतकार की को भी ये पैगाम दूंगा कि जिनके पास कोई सरमाया है, जो संतों में पहले से आए हुए हैं, तो वो भी इस सेक्टर में है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मंडी है। इसमें ग्लास फैक्ट्री चाहिए हमें, ठीक है, इसमें प्लास्टिक की भी जो है ना बहुत सी जो है ना जारों की सूरत में, मतबान की सूरत में वो हमें चाहिए, बाटल है इसमें, ठीक है, ग्लास बाटल है, प्लास्टिक बाटल है, जार है, उनके ढकने हैं लेड। तो मुख्तसर ये है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, मसलन वो भी आए इस तरफ, तो हमारी फाउंडेशन उनके साथ भी तआवुन करेगी, जो हमसे हो सका, जो हमारे पास मालूमात है हम उनको देंगे और उनको भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों तक भी कि जो सरमाया लगा सकते हैं वो इस सेक्टर में लगाएं, तो इंशाल्लाह वो भी कामयाबी से जो है ना वो बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे।
0: थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे। सैयद यूसुफ अली शाह साहब, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: थैंक यू बेटा, मेरी तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर देना, बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच। ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। आज के हमारे बहुत अच्छे से गेस्ट सैयद यूसुफ अली शाह साहब, जिन्होंने हमें ऑलिव के बारे में बताया, ऑलिव की अहमियत और उससे क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, किस किस तरीके से हम इसको खा सकते हैं, उसकी प्राइजेज और ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम आप तक पहुंचा सकते थे। तो आई होप सुधीर जी आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और आज का सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन ZFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज। पाकिस्तान की
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601001।
3: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोरा पर तेड़ो कामयाब कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: आले सुल्तान, शमसुद्दीन गब्बर हमें सुन रहे हैं, आशिक खासकेली हमें सुन रहे हैं, नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं, रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रहे हैं और कहती हैं कि वेलकम टू द शो. थैंक यू रेहाना. मैसेजेस बहुत सारे. कोट गुल हसन शर से हैदर बख्शर हमें सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच सना. जैक हमें सुन रही है. सना जैक थैंक यू. बाकी जी बारिशों का मौसम है तो क्यों ना बारिश वाला गाना प्ले किया जाए. और बारिश वाला गाना रेंडम मेरे सामने आ गया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे सामने आ जाए और मैं प्ले ना करूं. तो प्ले कर दिया है. सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.
1: गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे.

0: ओके साथ साथ कुछ कमेंट्स हैं. गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, आपको अभी ज्वाइन किया है. ओके जी वेलकम टू द शो. मीरपुर खास से हमारे साथ साथ मौजूद है इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, शमसुद्दीन गब्बर हमें सुन रहे हैं जी, और कौन सुन रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. तो 03000113488 के ऊपर लास्ट लकी कॉलर को हम चेक करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे, कहां से होंगे. ओके जी सो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट लकी कॉलर. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से? ओके आसिफ अली चाचर लास्ट लकी कॉलर हैं. मुझे बताएं आज की अच्छी बात.
1: आज की अच्छी बात है अपनी सेहत का खास ख्याल रखो.
0: ओके ओके जी वैसे हमने ये कल प्ले किया था. थैंक यू. और 03000113488 चूंकि हम लास्ट में लास्ट लकी कॉलर की कॉल्स दो पिक करते हैं तो हम एक और पिक करेंगे और चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो कॉलर हैं वो कौन है. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वाले

पाकिस्तान के दौरे ते मौजूद ईरानी घरू वजीर जे इस्कंदर मोमिन घरू वजीर मोहसिन मुलाकात इंतफाक खिते की सूरत हाल ते अफगान सरहद ता मंशियात ए दहशत गडियल मौकिफ इख्तियार करण ते जोर भरे वयो। सहकार के वधीक बेहतर करण लाए कोऑर्डिनेशन जो फैसलो मोहसिन नकवी चयो ते पाकिस्तान समूरन शोबन में ईरान सा सहकार वधण लाए ईरान जो परदेही वजीर ए घरू वजीर अमुन लाइ बेहतरीन कम कयो आहे। जल्द अमुन जी क़याम लाइ पुर उमीद।

ख़ैबर में बरसातुनि तबाही मचाए छॾी। बरसाति ऐं बोॾ जे नतीजे में फोत थींदड़नि जो अंगु वधी 19 थी वियो। 19 ॼणा ज़ख़्मी थी विया। पीडीएमए मूजिबि फोत में 11 मर्द, 4 ॿार शामिल आहिनि। बरसातुनि दौरान घरनि जूं छितियूं ऐं भितियूं किरण वारा वधीक फोतियूं आहिनि। पंजाब जे शहर गुजरांवाला में दौरान हादसनि जे नतीजे में 8 ॼणा मौत। हेठां वारनि इलाइक़नि में गोॾे जो पाणी थियनि, परेशान

0: अमेरिका जा ईरान ते यारे दिए भी हमला ईरानी शहर तेहरान सीरक एम्बियन लाकर निशानो बनाए हुए की सेनेट काम मौजूद जो मकसद ईरान से बहरी जंग के कमजोर ईरानी फौज जा जवाब अमेरिकी खिते में मौजूद अमेरिकी हमला पासदार इनकलाब मौजूद कोवैत में अमेरिकी फौज के ड्रोन के निशानो बनाए वो है जैमें अमेरिकी फौज जो वो नुकसान
1: अमेरिका ईरान से इन वक्त भी गाल तैयार है तेहरान गाल के हवाले से संजीदा ना है अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रूबियो अमेरिका ईरान बहरान जरिए चाहे तो बी धुर संजीदा सबक है तेहरान संजीदा ना है
0: पेंटागोन ईरान खिलाफ जंगला सेनेट का 87 घुरी वरता आहिन अमेरिकी दिफा वारे वजीर सेनेट कमेटी के आगाही डींदे चयो त ईरान खिलाफ जंग में वक्त ताईं 37 अरब डॉलर खर्च थी पेंटागोन के 80 अरब डॉलर घुर्बल आहिन जंहिं मां 80 अरब डॉलर विच रखिया वेंदा वज़ीर ब्रीफिंग डेमोक्रेटिक सेंटर्स सां सख़्त जुमिले वरिती थी डेमोक्रेटिक सेंटर हेक सत खे वज़ीर बेक़रार डि॒नो

कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट साम्हूं लेडी हेड वर्कर धरने सूबे जे मुख्तारन लेडी हेड वर्कर धरने में शरीक लेडी हेड वर्कर जो पीपीएच में हुकूमती फैसलो लेडी हेड वर्कर चवाए त हुकूमत उन्हनि पघारूं बंदि करे छॾियूं आहिनि।

0: सिंध में पानी की खोट खिलाफ मुजाहर धरण जो सिलसिलो जारी है। सन वेझो गोठान जो पीण के थाव खी मुजाहरो धरण रहवासी नथन में थाव खी पानी फराम कर नसीरबाद पानी के धारे खिलाफ अवामी पारा एहतजाजी रैली कढ़ी वही।
1: मकानी
0: निजकारी खिलाफ मुलाज़िमनि जो वफ़ाक़ी हुकूमत वापडा खे खानगान रुधल आहे जेको क़ाबिले क़बूल नाहे। निजकारी जो
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज, GAFM 94।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जनाब, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही तो तैयार किए गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से परचेज करेंगे, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ कैसे होगा, तो आप लोगों को बताऊंगी ना। सब्र तो करें, रुकें तो जरा, इतनी भी जल्दी किस बात की है आखिर। यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हो, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऐसा जो है ना, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो तरीकेकार बताएंगे। लेकिन साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज आप लोगों से प्रोग्राम के अंदर सवाल क्या पूछा जा रहा है वो सबसे पहले बता देते हैं। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में जो आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस शहर के लोग खाते हैं। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग ज्यादा खाते हैं, यानी कि किस शहर में सबसे ज्यादा पिज्जा खाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, और पेज को सर्च करने के बाद आप जब पेज पर आ जाएं तो आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव होती है व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो के, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए, और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं। हाँ जी, इसी के साथ साथ जो है अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप बेधड़क रابطہ करती रहें, आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप फलां जगह से हैं तो आप फलां जगह से जाकर जो है ना व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज करके, या तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नंबर्स बताए जाएं तो नंबर जरा नोट करते जाइएगा। नंबर है एक, पहला नंबर 03-12-5-0-2-5-9-0-7 03-12-5-0-2-5-9-0-7, और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09 03-27-38-43-09। ये नंबर से आपकी आसानी के लिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो आसानी से करवा सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होने चाहिए। चाहे आप किसी भी जो इना सिटी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी गोट से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। इसी के साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है, नाइट क्रीम, व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, उसके अलावा व्हाइट एश का ब्यूटी सोप है, व्हाइट एश का फेस वॉश है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और साथ में डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। अब इनके क्या तरीकेकार होंगे लगाने के वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रही, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी अनवर अली। यदि अस्सलाम वालेकुम, हाय सिद्रा, कैसी हो? अदी, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपको भी वेलकम कहा जाता है। आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं। और कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा। ओके, मैं कोशिश करती हूँ, लगाएंगे आपका गाना। अनवर कहते हैं पोइट्री, अपने दिल में नफरत मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उसके दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता। ओके, और चाचा खालिद जूनी जो हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं हाउ इज योर मूड एंड दिल का मौसम सिडो बेटा, होप वेल। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक अपनी जगह पर, आप बताएं कैसे हैं। और हैं जी आबिद परदेसी भाई हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। इखलाक बलोच हमारे साथ, नाइस यो, थैंक यू इखलाक भाई। अनवर भाई कहते हैं सिद्रा आज आपका मूड ठीक है। जी जी, और मोहम्मद अली खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप
अच्छा यानी कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है. थैंक यू जी, थैंक यू. और अब्दुल गफूर केसर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है. इस तरह पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए. चाचा खालिद आपने गाने की फरमाइश करिए, मैं लगाने की कोशिश करूंगी. और रमजान अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम इन मौला अलैहिस्सलाम मदद कहा जाता है प्यारे भाई को. और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथी, साजिद हुसैन सुमरो वालेकुम अस्सलाम मौला अलैहिस्सलाम मदद. आप हमें सुन रहे हैं मिठू देरों से, आपको भी वेलकम कहा जाता है. और हैं जी अब्बास अली नोहरियो, अब्बास अली कहते हैं शहबाज जान नोरियो, डिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्कर से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, वेलकम कहा जाता है. अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. अशोक कुमार हमारे साथ है, हाय सिद्रा कैसी हो, आई एम अशोक कुमार. ओके जी, फ्रॉम दिल्ली इंडिया से अशोक कुमार हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और हैं जी गुलाम फरीद बलोच हमारे, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जनाब, आपका प्रोग्राम वेरी ब्यूटीफुल है, सॉन्ग सुना दीजिएगा. बिल्कुल जी, आपको ब्यूटीफुल सा गाना सुना देंगे. मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम स्वीट कोयल, सदाबहार सिद्रा, अबुआ जी, हाँ जी बोले कैसे ठीक ठाक. रमजान अली कहते हैं मेरा महबूब इतना नादान है कि पूछो मत, मोहब्बत का दावा हमसे करके साथ किसी और का निभा रहा है. वाह साईं वाह, ये तो गदारी हो गई. अच्छा मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, शो आपका वेरी नाइस है, वाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है. और हमारे साथ हैं यहाँ पर हाय सिद्रा प्लीज प्ले सॉन्ग, हाय सिद्रा तो लिख दिया, अपना नाम भी लिख लेते तो कितना ना अच्छा होता. नाम लिखा करिए अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं पैनल पर, खास करके मैसेज करते हैं. मोहम्मद अली खोसो कहते हैं हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जबरदस्त सिद्रा आपकी सारी टीम को सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद एंड बखैर अगले. और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को फॉलो करते रहिए. मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है तो जरा उसका जवाब बताइए ना. तो सवाल ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग खाते हैं. हाँ जी बताइए मुझे जल्दी से, और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए जो की पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए.

0: GAFM 88 Network.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8196-851
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
1: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मीनिया से आप लोगों से सवाल पूछा है वो जरा फॉलो करते जाइए ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई आज प्रोग्राम में कौन सा सवाल पूछा गया है। तो आज के प्रोग्राम का सवाल है, आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर के लोग ज्यादा खाते हैं। पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा पिज्जा खाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ज्वाइन कीजिए जल्दी से, और साथ साथ में आप लोगों को बताने लगी हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। वैसे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को 2 बजे के बाद बताऊंगी, अभी आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये चीजें जो है वो बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो सके कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो परचेज करने होते हैं। अक्सर हम जब मार्केट जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन बड़ी आम सी है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें चीज समझ नहीं आती कि हम लेने क्या गए थे, हम लेकर क्या आ जाते हैं। तो ये चीज आके दूर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे जब आप मार्केट जाएं तो आप लोगों के जहनों पर भाई ये चीज फिट हो, वाजे हो कि आपने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। तो आप अपने हिसाब से परचेज करेंगे जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि भाई आप लोगों के लिए व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम भी है, व्हाइटिश लवली क्रीम भी है, व्हाइटिश का सोप भी है, व्हाइटिश का फेस वॉश भी है, और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। तो अगर शुरुआत की जाए कौन से प्रोडक्ट्स से, तो मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना, ये खास करके उन खवातीन के लिए तैयार किया गया है, उन मर्द हजरात के लिए तैयार किया गया है जो कि भाई अपने चेहरे के एक्नी की वजह से परेशान है। एक्नी यानी कि दाने अगर आपके चेहरे पर भी मौजूद है और दानों को खत्म करना चाहते हैं, ना सिर्फ दाने बल्कि आपके चेहरे पर जो दानों के निशानात हैं, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई इस तरह का निशान जो कि हमेशा से आप अपने चेहरे पर देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको उसका सलूशन नहीं पता कि भाई ये कैसे दूर होगा, कैसे खत्म होगा, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। ये जनाब इतना जबरदस्त सा प्रोडक्ट है ना कि यकीन जाने मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और भाई मुझे ना ऐसा है कि जिसको भी मैं देखती हूँ जिसके चेहरे पर एक्नी और वो परेशान है बहुत ज्यादा, तो मैं कहती हूँ भाई आप मेरे कहने पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके देखें। ये फुल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, यानी कि इसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई है, आयुर्वेदिक फार्मूला है, और उसके अलावा ये आपके चेहरे पर जो एक्नी होती है ना उनसे फाइट करेगा, आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे खत्म करेगा, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, ब्लैक पॉट्स हो, या फिर एक्नी आपका किसी भी साइज का हो, यानी कि बहुत से लोगों के चेहरे पर कुछ छोटे छोटे एक्नी निकल आते हैं, कुछ चेहरे पर ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े एक्नी निकल आते हैं, तो किसी भी तरह का एक्नी हो वो खत्म हो जाएगा जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के क्या तरीकेकार हैं, तो लगाने के तरीकेकार थोड़े से मुख्तलिफ कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होता है ना, सिर्फ आप रात के टाइम ही लगाना पसंद करते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई जो क्रीमें होती हैं वो रात के टाइम लगाएंगे, तो पहली बात तो ये कि ये क्रीम नहीं है, ये एक ट्यूब है, और ये फुल जनाब आयुर्वेदिक फार्मूला भी है, और साथ साथ मेडिकेटेड फार्मूला भी है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर भी तैयार किया गया है। और उसके अलावा इसे आप दिन में भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे। अगर एक्नी बहुत ज्यादा है तो फिर आप 3 मरतबा लगा सकते हैं, यानी कि दोपहर में भी लगा सकते हैं। वैसे इसको लगाने के जो तरीकेकार हैं वो बहुत ज्यादा आसान है, और बहुत ज्यादा ऐसा सीन बनेगा कि जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे ना, तो लगाने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिएगा, फेस वॉश करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। लगाने के बाद आप लोगों को इतना अच्छा ठंडक का एहसास होगा, इतना ठंडा ठंडा लगेगा ना आपको कि आके एक्नी जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मैं आखिर क्यों इस चेहरे पर आया, तो वो जल्दी से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एक्नी तो क्या, एक्नी के निशानात खत्म हो जाएंगे, यानी पाड़ ही पट्टी वेंदर। तो एक्नी अगर तां खत्म करना चाहो था, दाना तां खत्म करना चाहो था, तो तां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल लाजमी करे दिस जो। उनके अलावा असा मूव कयूं था बाबा, अगर तव्हां व्हाइटिश जो साबुण इस्तेमाल करण चाहियो था, त तव्हां वटि व्हाइटिश जो ब्यूटी सोप मौजूद आहे, ऐं व्हाइटिश जो ब्यूटी सोप जेको आहे उहो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो सफ़ा डिटो कॉपी आहे, सेम टू सेम आहिनि। यानी कि अगर जहिड़े तरीक़े सां व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम खे तयार कयो वियो आहे, तीअं ई व्हाइटिश जो ब्यूटी सोप बि तयार कयो वियो आहे। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि एवोकाडो आहे, व्हाइटिश ब्यूटी सोप जे अंदरि बि एवोकाडो आहे, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि एलोवेरा आहे त व्हाइटिश ब्यूटी सोप जे अंदरि बि एलोवेरा आहे, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि मिल्क आहे त व्हाइटिश ब्यूटी सोप जे अंदरि बि मिल्क आहे। ही सफ़ा मतलब हिक ई सेम तरह सां तयार थियल आहिनि, तव्हांखे रिज़ल्ट बि सफ़ा VIP ॾियण वारा आहिनि। त जेके माण्हू साबुण इस्तेमालु कंदा आहिनि त हू व्हाइटिश जो ब्यूटी सोप लॻाए सघो था, तव्हांजी स्किन फ्रेश थी वेंदी, तव्हांजी स्किन हेल्दी रहंदी, ऐं तव्हांजी स्किन ते ग्लो ई ग्लो हूंदो। उन खां अलावा अगरि तव्हां चओ था त बाबा असां साबुण आहियूं त ॻाल्हि सिधी आहे, असां फेस वॉश हणंदा आहियूं, त बाबा टेंशन छो था कयो, तव्हांजे लाइ व्हाइटिश जो फेस वॉश भी मौजूद आहे। ऐं व्हाइटिश जो जेको फेस वॉश आहे बाबा, ही थोरो मुख़्तलिफ़ आहे, छो त व्हाइटिश जे फेस वॉश खे जेको आहे न वाइटमिन सी सां तयार कयो वियो आहे,
हिन जे अंदर वाइटामिन सी आहे, वाइटामिन सी सां गॾोगॾु वाइटामिन ई बि अथसि, ऐं उन खां अलावा जेको आहे न वाइटेज जो जेको ही फेस वॉश आहे, इहो तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी स्किन जेका ब्राइट थी वेंदी, एंटी एजिंग जे लाइ आहे, ऐं तव्हांखे सफ़ा ईअं क्रीमी फेस वॉश मिली वेंदो। तव्हां चाहींदा बाबा वाह वाह, अहिड़ा फेस वॉश त ईंदा रहनि, मुल्क तरक़ी कंदो रहे, त बिल्कुलु अची विया आहिनि वाइटेज जो फेस वॉश, तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। उन खां अलावा जेको आहे सो वाइटेज ब्यूटी क्रीम आहे, ऐं वाइटेज ब्यूटी क्रीम हिकु नाइट क्रीम आहे, सो जेके नाइट क्रीम हणण वारा शौक़ीन माण्हू हूंदा आहिनि, सो उहो वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघनि था। वाइटेज ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त तव्हांजी स्किन जेका आहे फ्रेश रहंदी, ग्लोइंग रहंदी, ऐं तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी उन्हनि तमामु चीज़ुनि खां जेके चीज़ूं तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदियूं आहिनि। यानी कि तव्हांजी स्किन अगरि ख़राब बि थी वई आहे त तव्हां टेंशन न वठो, वाइटेज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, जीअं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो, बेदाग तव्हांजी स्किन थी वञे, ऐं तव्हां सफ़ा ग्लो कंदा वधो। ऐं उनखां अलावा लास्ट में असां वटि बचो आहे बाबा असांजो फेवरेट प्रोडक्ट जंहिंजो नालो आहे अज़ीमो शान शहनशाह वाइटेज लवली क्रीम। हाँ यकीन जाने वाइटिश लवली क्रीम मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी भाई हर एक इंसान को नीड होती है, हर एक इंसान की जरूरत वाला प्रोडक्ट है। अगर आप भी वाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले सुन लेंगे वाइटिश लवली क्रीम के जो फायदे वो कितने ज्यादा है। और वाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप दिन में इस्तेमाल करेंगे, रात में लगाएंगे, जब आपका दिल करे तब लगाए, क्योंकि फेयरनेस क्रीम जो होती है ना वो ऐसे बस चुटकियों में आपको रेडी कर देती है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि वाइटिश लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपकी स्किन के मुताबिक तैयार की गई है, तो बिल्कुल जी। वाइटेज लवली क्रीम जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है, जिसके अंदर 30 विटामिन्स कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों की स्किन का ख्याल रखते हुए इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस आप लोगों को सिर्फ खूबसूरती मिलेगी, बल्कि ऐसा है कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। तो अगर आप भी वाइटेज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिए, कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, ख्वातीन हैं, हर कोई वाइटेज लवली क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं और आपको जल्दी में सुबह सुबह रेडी होकर जाना पड़ता है काम पर, तो आप वाइटेज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी स्किन ग्लो भी करती रहेगी, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहेगी सूरज के इन खतरनाक से असरात के साथ। तो बिल्कुल अगर आप भी वाइटेज लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप भी बन जाएं खूबसूरत और खूबसूरतियां आपको मिले वो वाली जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-12-50-25-907 या वरी तुम डायल कंदा 033-27-38-4309। ओके जी, सो जल्दी जल्दी से ये नंबर डायल करते रहिए ताकि आपकी खूबसूरती आपको मिलती रहे और आप भी ये सोचे कि भाई जान अब हम भी हसीन हो सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सोचे कि भाई जान अब हम भी हसीन हो सकते हैं।

0: हाँ जी भाई तोबा है, इतना हुसन आपको मिल जाएगा कि लोग पूछेंगे आपसे, आप उन्हें बताइएगा कि ये कमाल वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। इसी के साथ साथ अशोक कुमार भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं यू वेलकम जी, आपका शो सो नाइस, थैंक यू वेरी मच अशोक कुमार भाई। अनवर कहते हैं सॉन्ग सुनाए असा हथ मथे क्या सीन डाडोवा, लगाने की जी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वासु भाई, वासु भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है। मोहम्मद समान कहते हैं सुंदर कहा था, हाँ जी हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वो तो मैं हूँ। रिजवान अली हमारे साथ कहते हैं हाय बहन कैसी हैं आप, आपका शो वीआईपी है, रिजवान मरी मेहरापुर से हमारे साथ है, वेलकम जी, खुश आमदीद।
1: ज़ुल्फों को छूकर तुम जब मुस्कुराती हो,
0: हाय हाय।

रिहाना हमारे साथ हैं बखर से, आप हमारा शो सुन रही है। रिहाना आपको भी वेलकम कहा जाता है। मोहम्मद अली खोसो भाई कहते हैं मेरा सलाम दीजिएगा अयूब भट्टी बाबल खोसो को। ओके जी, रिजवान अली बलोच हमारे साथ हैं, हाय। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहती है कि चंदा जानी आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है। स्वीटी कहती माय फेवरेट आजे चंदा, हाँ जी। इकबाल लाशरी हमारे साथ ही बाजी, सवाल जवाब आहे। इटली में तो सब खां वधीक पिज़्ज़ा ठयो वेंदो आहे, ऐं हा इहा ॻाल्हि बि आहे त जिते सब खां वधीक पिज़्ज़ा ठयो वञे थो उहो सिटी त खाई कोन थो, ऐं ॿियो हिकिड़ो सिटी आहे उहो खाए थो। इहो छा लॉजिक आहे इहो तव्हां ॿुधाईंदा मूंखे? सभु कुझु मां कोन ॿुधाईंदसि न। अनवर तव्हां बि सवाल जो जवाब ॾिनो आहे, ओके जी। दर्दे दिल हमारे साथ और कहती है, ऐसा लगती है वक्त खामोश मगर कीमती, वक्त का गुजर जाना तो कुदरत का निजाम है मगर वक्त को जाया करना ये इंसान की अपनी नादानी है। लम्हे कीमती है मगर हम अक्सर उनकी कदर उस वक्त करते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुके होते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और ऐसा ये वक्त की कदर आजकल कोई नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है। तो वक्त की कदर करनी चाहिए, सही बात है। और रमजान अली कहते हैं मतलब खत्म हुआ तो मुझे छोड़ गया वो शख्स, फकत ये कहकर अब हम आपके कुछ नहीं लगते। क्या बात है रिजवान भाई, रमजान भाई आपके बिल्कुल नीचे रिजवान अली बलूच भी मौजूद हैं जी, खुश आमदीद कहा जाता है। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है? और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप इस वजह से नहीं कर पाते कि भाई आपके एरिया में नहीं अवेलेबल, आप लोगों के सिटीज में नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो नंबर बता रही हूँ ना, बस वो नंबर डायल कर लिया करें। नंबर जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी वाइट एश के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप बस वहां से जाएंगे और परचेज करके आएंगे। तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप जल्दी से जो है ना वो अवेलेबल कराइए, उसके बाद इस्तेमाल करते जाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस हम कह सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप खूबसूरती तो बढ़ाएंगे लेकिन खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगे। तो खूबसूरती की हिफाजत कीजिए और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए।

ओके जी, चाचा खालिद कहते हैं दोनों में से, अच्छा आपने पूछा है कि आप कौन सी वाली लगाएं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की स्किन के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की स्किन कैसी है, तो मैं आप लोगों को दोनों प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग सिलेक्ट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे चेहरे के ऊपर सूट कर सकता है, तो वो आप प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान कहते हैं चापे कैंसर।

ऐसा नहीं है मोहम्मद जमान भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। सैयदा बुखारी हमारे साथ कहती है सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम मोहतरमान जनाब, क्या हाल है आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुमामीन, और यारब अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन मेरी जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। कहती है कि वफा का दर्स लेना है तो फूल से ले, जो पौधे से जुदा होते ही मुरझा जाते हैं। सैयदा बुखारी राइटर, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और कहती हैं आई मिस यू सो मच, वेलकम कहा जाता है प्यारी को।

ओके जी, वारी वारी जावा, लेकिन आप तो ये बताइए वाइटेश का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा साजिद हुसैन सुमरो कहते हैं शो आपका नाइस है, शमन का गाना लगाइएगा। बिल्कुल लगाते हैं। हैप्पी गर्ल कहती हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। अच्छा समीरो चौहान हमारे साथ हैं थर पार्कर से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और आबिद रसूल आबादी की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई तवां की चौथा भली करी आया प्यारा भाव। कश्मीर से इखलाक भाई हमारे साथ ही, आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि आप समझ गए होंगे कि आपका गलत जवाब है। अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, हाँ ना इस्तेमाल करती रहिए। और गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो, मरी खां कुर्बान अली खास के लिए बाजी काल सिस्टम रखे सॉन्ग अल्लाह दिनो जुनेजो का सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे। और चाचा खाली जुनेजो कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके ओके ओके, मैं लास्ट में आपको बताकर जाऊंगी कि किसका जवाब जो था वो दरअसल सही था। और हमारे साथ हैं चाचा खाले जुनी जो आपने गाना लिखा लगाने की कोशिश करेंगे जी। और उसके अलावा आबिद रसूल आबादी सबनी दोस्तन के सलाम अदी किस्मत सा अर्ज कयो आ बरकत भट्टी जो गानो हलाए जो ओके भामा कोशिश क्यांदी तांची पसंद जो गानो तांके बुधराइंदासी मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया।

मोहम्मद जमान भाई पूछ क्या रहे, जवाब क्या दे रहे हैं, मत करिए ऐसा भाई जान। और उसके अलावा जो है ना, मतलब आप अपनी बुआ जी को चिढ़ा रहे हैं। ओके सो ऐसा करते हैं, यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जनाब न्यूज ब्रेक का, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी होने वाली है, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे, घबराइएगा नहीं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनती रहिए और सादिक जी पूरी पूरी 3 बजे तक, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी हसीन हो जाए।

0: It's 2 PM. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: फ्लॉलेस है मगर फ्रेश नहीं, इसलिए फ्रेशनेस के लिए है कुछ नया White Age Vitamin C Brightening and Anti-Aging Face Wash जिसके डेली वॉश से चेहरे को मिले ट्रॉपिकल ऑरेंज और विटामिन ई की
4: हमले की कौमी सलामती के खिलाफ हम लोग समझो भी
5: नाने वारे वफाक की वजीर मोहम्मद औरंगजेब जी वाशिंगटन में अमेरिकी हम मुनसिब से मुलाकात वापारी सहकार वधाण ते इत्तफाक सीड़प कारी बरामदाद वधाण ते नाने वारे वजीर वजारत मौजूद मोहम्मद औरंगजेब अमेरिकी हम मुनसिब स्कॉट बेंसन से मुलाकात है नाने वारे वजीर अमेरिकी मुनसिब के रोड टू मार्केट हिकमत अमली लाइ अमेरिका के सहकार की दरख्वास्त कई मुलाकात दौरान पाकिस्तान में अमेरिकी सीड़प कारी में वाद स्टेट जब मनसूबन के अगते वधाण ते इत्तफाक कयो वो

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-12-50-205-907 ऐं ॿियो नंबर आहे, अगरि हीउ नंबर नथो मिले त ॿियो नंबर आहे 03-32-73-84-309 03-32-73-84-309। ये नंबर आप डायल करेंगे और आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि आप कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके एरिया में कहां मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो वो अवेलेबल करा देंगे। तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि भाईजान कितने सारे प्यारे लोग हैं जो प्यारा बनना चाहते हैं और उनके एरिया में नहीं अवेलेबल डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ये तो सरासर नाइंसाफी हो, तो अवेलेबल कराइए, थोड़ी सी मदद कीजिए और उसके अलावा खूबसूरत हो जाए। तो जनाब यहाँ पर गाना लगाया है जिसकी फरमाइश मुझे 2-3 दिनों से अरीबा कर रही थी।

है साईं छायो मुमकिन आहे आहे आहे प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा हमारे साथ यहाँ पर पैनल की जाने बातें हैं तो कौन कौन मौजूद हैं? अरिबा कहती है ओ मेरी प्यारी आपी हाँ पी जान अच्छा आबिद रसूलाबाद खान जेको भासा के बुधे पयो तां बरकत भट्ट जो गानो चयो आ मां इन में थोड़ो कंफ्यूज थी वियम त बरकत भट्ट जेको आ बरकत अली आहे तो मु सर्च कयो त बरकत अली हुयो बरकत भट्ट मुखे कोन मिलियो तो अगर हु सेम सिंगर आए त मुखे बुधाए त तां लाइ गानो हलाईंदासीं समझो था मां थोड़ी सिंधी सिंगर्स में मां कंफ्यूज आया छो त मेरा साबुन स्लो है अच्छा उन के अलावा गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर विलेज अला वरायो बाबर से असा सा गड मौजूद आइन सो भाईरन जो मोहब्बतू आइन प्रोग्राम बदो पिया मैसेज छ तवा जो मिसिंग पार्ट थी वयो आ और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान केड़ा हाल है तवा जा फौजी पठान खान खोसो है सिद्रा गानो लिखियो आ तवा डेडिकेट कयो आ हसीना सुमरो के डॉक्टर हसीना सुमरो के ओके अच्छा इरम कहती है प्यारी

ओके जी, सोनी कहती आप ही जान में भी आ गई, आप ही सुबह कब होगी, आप ही कल के दिन का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। अगर आप इंतजार करें तो आपको आज का दिन बहुत बड़ा लगेगा, गुजरेगा ही नहीं। तो वेट करना चाहती हैं तो बस थोड़ा सो जाए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैं, ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज का वेट कर रही हूँ लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरा तो फिर मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ जी, अब जो वक्त है वो तेजी से गुजर गया है। और शायद बबर की आवाज में हमने यहाँ पर गाना लगा लिया है, शाह जमाने मूसा घटक हुई जो तू भी निकली आए।

0: स्वागत प्रोग्राम है वाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वने पयो बाबा वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जे तावन सा तो अगर तहां भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या करण चाहियो था तो तहां लाज़मी इस्तेमाल करे दिसजो टी स्किन ब्यूटी क्रीम जे का है
1: सारी दुनिया खा वधि
0: एतरी जबरदस्त क्रीम थवा अगर तहां इस्तेमाल करे दिसना तहां के खबर पेजी वेंदी एकदम मेडिकेटेड फार्मूलो है बयो तो डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तैयार थयल है टियों तो बिन दिन में तहां के रिजल्ट दींदी ए चौथो तो सब इन जे अंदर जे के चीजों ऐड थयल है वो सब तहां जे स्किन लाइ जरूरी है सो ये सब चीजों जडे मिली करे तवा के निखार दिंदो तवा के रिजल्ट मिलदो तो तवा खुश थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ए गड तवा डी स्किन जो फेस वॉश भी वठी सगो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो ए डी स्किन फेस वॉश हणो नथा मिलन त जे के नंबर बुधाय दो न ते राप्तो करी वठो

0: दुश्मना
1: यस यस गलत गाला
0: अच्छा दुनिया दर्द घट हा देना जो वही तो कया दुश्मना
1: ओके आबिद भाई मां समझी हुई हम ठीक आए थैंक यू सो मच हाँ वो आपने जी कास्ट होंगी ना कड़ी कड़ी माँ वाकई अड़ा कम करी वेंदी है जो पानी खिल लेंदी है अच्छा ये हमारे साथ हैं जी हैप्पी गर्ल आपको वेलकम कहा जाता है और ये रुखसार मरी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आप ही क्या हाल है आपके आपका शो सुन रहे हैं आप ही अच्छा कहती है कि मैं अभी 16 साल की हूँ तो मैं ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती लेकिन हाँ फेस वॉश लिया है अम्मी और सिस्टर यूज कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट है रुखसार मरी मीरपुर खास से क्या बात है आपको खुशामदीद कहा जाता है वैसे कौन सा फेस वॉश लिया है वाइट इश का या डी स्किन का

0: ज़माना
1: ओके ठीक शायद पर जो ही वारो गानो मतलब जेको आ ना काफी टाइम खा मुखे इलाही सुठो लगंदो आ अलाई छो सुठो लगंदो आ त मतलब ही गानो बुधी करे मुखे एहसास थिंदो आ त जेके असानी जिंदगी में प्यारा मानु होंदा आइन हाँ जैसे सब का वधिक असा प्यार कयो हुंदो आ रिस्पेक्ट देनी हुंदी आ जो एहतराम कयो हुंदो आ आई तने उही मानू असा के तकलीफ दीना है त पो वाकी दुख थिंदो आ कुछ चीजों असांजे हथ में हुंदियूं आहिनि अगर असां कोशिश कयूं त करे सघूं था तव्हां बि कोशिश कंदा कयो जेके प्यारा माण्हू जेके दिलि वारा माण्हू तव्हांजा आहिनि तव्हांजे क़रीब आहिनि उन्हनि खे कोशिश कयो त तकलीफ़ न ॾियो छो त अॼुकल्ह जेको दौरु हले पियो ज़मानो हले पियो ॾाढो ॾुखियो आहे कोशिश कयो तव्हां थोरो उन में हिसो घटि विझो पंहिंजो ख़ुशि रहो ऐं माण्हुनि खे ख़ुशि रखण जी कोशिश कयो अली मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हुई कहते हैं सलाम गुड आफ्टरनून वालेकुम असलाम गुड गुड आफ्टरनून

ही टाइम थी वहाँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वो था वापसी जल्दी तमानी मोटी ना तमाम इतने बैठा हो जो कारी ने मंजो सवा पानी सीट तना जो मां ओही मनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: प्रोडक्ट बाय DS कॉस्मेटिक्स।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्धराव के साथ। और जी मेरे साथ कौन कौन है, कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं बताइएगा। और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला

गाना कितना सुंदर है सुनकर, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है लेकिन अच्छा लग रहा है सुनकर। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को बताया जाता है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए। उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिले, तो आपके लिए नंबर है जो कि प्रोग्राम में बताती हूँ ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके और आपको आसानी हो। अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर है जनाब 03 12 50 25 907, या फिर दूसरा नंबर है 03 32 73 84 309। ये नंबर है जो कि आपकी आसानी के मुताबिक है ताकि आप इन्हें डायल कर सके और इनसे मालूमात ले सके, वो मालूमात जो आप लोगों को शायद मुझसे नहीं मिलती। और इसके साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, दिन आप इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम बात करें

हाय क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो जरूर कीजिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो ये फुल मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे इस्तेमाल करते साथ आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसे लगाने के बाद आपकी स्किन मजीद खराब हो चुकी है। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं चाहे आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का भी इंतखाब करेंगे, दोनों चीजें साथ में लगाइएगा। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों से जो सवाल पूछा है टॉपिक प्रोग्राम का, ये है कि आप मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा जो है वो किस शहर में खाया जाता है, किस शहर के लोग जो है वो सबसे ज्यादा पिज्जा खाते हैं, और उसके साथ साथ

0: तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो. साथ साथ ये गाना डेडिकेट जाता है अली मुर्तजा के नाम. ओके जी, अली मुर्तजा ने जो चौपे का जवाब दिया था वो बड़ा वखरा दिया था, लेकिन क्या ही बात की आपके जो कमेंट है वो ऊपर चले गए. वैसे वो ड्रामा मैंने देखा नहीं, लेकिन ड्रामे की थोड़ी सी क्लिप्स देखी थी, उसमें ये पता चला था कि वाकई डिलीवरी बॉय होता है उस पर उसका दिल आ जाता है. सही है भाई, शुरू करें अभी नेकी और पूछ. नजीबुल्ला बिरोही हमें सुन रहे हैं. हाय, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
1: मैंने देखी मेरी महबूबा तेरी
0: ओके जी ओके, मुझे बात समझ आ गई. और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ
1: क्या पूरिया
0: भाई. आप ऐसा कीजिए मोहम्मद समान, आप डी स्किन का फेस वॉश जो है ना वो लगा के देखिएगा. सच्ची मुझे बता रही हूँ, बहुत कमाल का फेस वॉश है. जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का. और मुश्ताक अच्छा, मुश्ताक बलोच हमारे साथ है, आपको भी वेलकम कहा जाता है.

कहोगे जी महबूबा है और महबूबा की क्या बात है। और वहीद वफाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, क्या हाल चाल है आपकी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन है। जेकब आबासी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। रुखसार मरी कहती हैं डी स्किन लिया है, बलोची सॉन्ग सुनाएं, डेडिकेट हमारी पूरी फैमिली और आपको, बलोची गाना आपने सुना होगा। और अब्दुल रजाक बलोच हमें सुन रहे हैं, दादू से वेलकम जी। इस गाने के साथ बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है।

अरे भाई जवाब बताने कितनी जल्दी क्या है बताऊंगी, अभी तो टाइम पड़ा है, रुको जरा सब्र करो। यूनिस खुड़ो हमें सुन रहे हैं, कहते हाय अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रमजान लिखते हैं कि कहते तो जो दिल क्या चीज है, जान भी लुटा देंगे। आज कहते हैं छोड़ दो हाथ, मेरी इज्जत का सवाल है। वाह साईं वाह। अच्छा ये किशोर भाई हमारे साथ, कहते सलाम अदा की आयो, खुश चाक चंगा भला, डियो खबर है सब खैर था है, सब खैर मजे में ताम बताया, घुमी फिरी मजा करे आयो। अच्छा दर्द दिल कहती है चंदा कल से इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही हैं। नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ, वैसे क्या है कि कभी कभार इंसान को थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए। और ये मैंने गाना लगाया है जी बरकत अली की आवाज

कारो को पाइन जो शौक थियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी हण जो ठीक आ ता के टे कारो बगो ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता के मिले थी गड ता के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिले तो आने तमा ते ता बई चीजो लगाया था या जेका दिल चवा चवे तमा जी सा तमा लगाए सको था और किशोर भाके थी अदा घबरान आओ आ गया हूं भलो कयो था और हे जी हमारे साथ ये हैप्पी गर्ल क्या कहती है मैं आपके शो की दीवानी हूं मतलब आपके लिए पागल हूं सच्ची बताएं अच्छा ए मंसारी कहते ऑरेंज कलर वाली ये करे दिल ना करे भाई हा? दिल को संभाल के रखे सर अच्छा दिल के संभाले रखो बाबा संभाले रखो कम ही दव अच्छा मोहम्मद रहीम राजड़ हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम तवा के वणे पयो थैंक यू और अली मुर्तजा कहते सेम हियर पीटीवी का वो दौर मेरे टाइम में एटीवी आ चुका था और एटीवी पर ये ड्रामे गाने चलते थे शाम के टाइम पर एक शो चलता था उसका पता नहीं क्या नाम था थोड़ा अजीब सा नाम था अजीब सा मतलब डिफिकल्ट था याद नहीं रहा तो वो हम देखते थे वो पसंद होता था शुरू से बचपन से मुझे गाने सुनना और देखना बड़ा पसंद था

0: ओके जी, चाचा कहते हैं डी स्किन क्रीम का फेस वॉश कमाल, यू कैन सी इन माय डीपी। ओके जी, चाचो ता सफा हीरो लगो पयो आ। वाह वाह वाह वाह चाचा, ई बाबा डी स्किन जो फेस वॉश हणो, डी स्किन जी हाणे क्रीम भी हणण स्टार्ट कयो, समझो था। अच्छा हैप्पी गर्ल कहती है, मैं कभी कभी आपको मैसेज ना करूं तो आप समझ जाना कि मैं आपका प्रोग्राम शामिल नहीं हो पा रही, लेकिन आप समझ लेना कि मैं आपका शो सुनती हूं। ओके जी ओके, हम समझ लेंगे यही बिल्कुल जो आपने बोला, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और उसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो, तो जो नंबर आपको बता रहे हैं उनके ऊपर रब्ता किया करें, कॉल या फिर एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें, उनको बताएं कि भाई आप कहां से हैं और आप शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिलते ये प्रोडक्ट, तो वो अवेलेबल करा देंगे, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप जो है ना कोशिश करें कि ये नंबर जो आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर रब्ता करें, कॉल या फिर मैसेज आप जरूर किया करें। और सोनी कहती है आप ही
1: किसी की तरह,
0: वाह साई वाह वाह साई वाह, यानी फुल मजे में एंजॉय करना। और ये अदी सिद्रा में आफ्ताब अहमद मक्सी, अदी प्लीज सॉन्ग फायजा अली का सुनाइएगा, मिल सोहना डेडिकेट आपने किया है मेरी जान ए के नाम। चले ये गाना अगर अभी नहीं चल सका, वैसे अभी नहीं चलेगा, 5 बजे वाले प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगी, ठीक है, आप 5 बजे मुझे ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है, कहते सलाम था कहीं प्यारे शो में अवां के, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सोनी मैं समझ गई। और विलेज मोहम्मद पंजल शर से ममताज अली शर के वीआईपी प्रोग्राम हले पयो तमाजो, थैंक यू भा।

जी बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हैं यहाँ पर हैप्पी गर्ल कहती है लाड़काना में तो मिलता ही ना प्रोडक्ट। हाँ जी बिल्कुल लाड़काना में आपको कहीं से भी जाएंगी तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा

जी बिल्कुल सवाल का जवाब बताती हूँ. और इखलाक भाई कहते हैं डी स्किन का क्या कमाल है. जी जी शायद कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल जरूर कीजिएगा. किशोर भाई कहते हैं खुद को आजमा के हम नहीं रोएंगे. भाई रोना भी नहीं चाहिए, खुद को आजमा के क्यों ही रोएंगे. कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती, और हम हैं कि समझना चाहते भी नहीं. ओके सो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पिज्जा है वो किस शहर के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क के जो लोग हैं ना वो पिज्जा सबसे ज्यादा खाते हैं. दुनिया में मतलब एक ऐसा सिटी बन चुका है न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाला जो ना वो सिटी है, तो न्यूयॉर्क इसका सही जवाब है. अब आप देखेंगे किसने सही जवाब दिया किसने नहीं. मैं नहीं बताऊंगी कि किसने सही दिया किसने नहीं. और इसी के साथ यहाँ पर टाइम भी आ जाता है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. हमारे जाने का वक्त आ चुका है ना, क्या करें.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Bharpoor jawab do. Saudi Arab ke vyapari sargarmin baba dhamkiyon mein kabul na jo na hai.
5: अमेरिका खिते में जंग न थो चाहे वाशिंगटन गाले लाए तैयार आहे तेहरान आहे मनीला में असा गालाइंदे अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रूबियो आहे तन हर्मस में बेराजन जो दिफा कर आयु के हथी रही रहो आहे कंट्रोल दे सके सा तकरार जो सुपरती हल चाहियो था यूक्रेन जंग जे खात्मे अमेरिका अदा करे रहो आहे
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: यार कुछ दिन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
7: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सोना तो करी
6: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
7: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंदते आसानी सा जजब थी सूर आय सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
6: सिर्फ चेल ही सूर लाए
7: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ है सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
6: इस्तेमाल किए कजे
7: मुतासिर थेल हंद ते डी में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हां फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खा आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
8: खुशखबरी साहिब डेज शफा मियां मरीजन के सेहत अवाजी हिफाजत असाजी सखर ए हैदराबाद जो मशहूर ए मारूफ इस्लामाबाद जो डिग्री याफ्ता होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद राशिद DHMS RHMP हाणे अवाजे पंहिंजे शहर लाडकाणी में मरीजन जो मायनो इलाज करे रहयो आहे असा वट हर नंडी ए पुरानी बीमारिन जो बगैर ऑपरेशन इलाज कयो वने थो जे में पथरी मोका फॉलेज कुन रग ए जोड़न जो सूर मादे जा मसाला शुगर ब्लड प्रेशर जनाना ए मर्दाना बीमार जो इलाज कयो वने थो जनाना चकास लाए लेडी असिस्टेंट जी सहूलत मौजूद आहे एड्रेस पुरानी कराची होम्योपैथिक क्लिनिक सामो सलाम मेडिकल सेंटर लग हमीद कंठन वारो बाखरानी रोड लाड़काणो टाइम रोजानो सुबह जो 9 बजे खां शाम जो 5 बजे ताई नोट जुमे जे डी क्लिनिक बंद रहंदी याद रखंदा हर आचर ते चेकअप ए मुआइनो मुफ्त कयो विंदो आहे वधिक मालूमात ए रश खां बचण लाए क्लिनिक इंचार्ज शेख अली रजा सा राबतो कंदा 0315069 01-033-033-62502
9: खुशखबरी लाड़काने जो मशहूर है अगुणो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो फिफड़न जे बीमारिन जो माहिर MBBS DTCD FCPS इते टीबी नमूनिया पुरानी खंग बलगम में रत अचण रेजस फिफड़न में जारो ए पानी जो भरजन दम ए सहको साह जी तकलीफ ए छाती जे कैंसर जो इलाज कयो वने थो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो फिफड़न जे बीमारिन जो माहिर एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज जेल रोड लाड़काणो क्लिनिक टाइम रोजानो सुबह जो 10 बजे खा मंझन जो 1 बजे ताई शाम जो 4 बजे खा रात जो 9 बजे ताई आचर जे डी सुबह जो 10 बजे खा शाम जो 4 बजे ताई जुमे जे डी क्लिनिक बंद रहंदी राबते जे लाए 0744055377 आई मोबाइल नंबर 0330126439 याद रखंदा अपॉइंटमेंट टेलीफोन आई मोबाइल नंबर जे जरिए भी दिनी विंदी आहे
8: हर चेहरो पंहिंजी अलग सुञाणप रखे थो ऐं हर सुञाणप खे घुर्जे खास ख्याल एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सां गॾु अव्हां जी रोज़ानी स्किन केयर रूटीन जो हिस्सो नरमी जो अहसास ताज़गी जो एतमाद ऐं केयर जेका हर ॾींहुं अव्हां सां गॾु हुजे एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम खूबसूरतीअ जो एतमाद हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सां गॾु एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप ज़रूर इस्तेमाल कंदा शहर जे हर मेडिकल स्टोर ऐं जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे हेल्पलाइन नंबर 0314 1705558
10: अदा छा गाला डाडो परेशान पियो लगी
9: भाऊ छा कया बिन सालन खा अमर पथरिन जे मर्ज में मुब्तला आहे डॉक्टर ऑपरेशन जो चवन था गरी फीस जो बुधी हर दफे मायूस थी मोटी इंदो आहा
10: भाऊ मायूस न थी अज मा तोखे अल्लाह वारन इंसानन जो दस थो जा जिन पांजे अमर जे नाले ते एको खैराती इदारो ममताज वेलफेयर खोलियो आहे जे में मरीजन जी चकास ऑपरेशन मुफ्त में कन था
9: जी हाँ बा अखलाक बा किरदार इंसान दोस्त आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी संदस घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी MBBS FCPS यूरोलॉजी की डिग्री अल्लाह पाक की राह में वक्फ कर छी है इतने गुर्दे मसाने में पथरी कैंसर इन्फेक्शन पेशाब में जलन रुकावट बेओलादी गुदूद जो ऑपरेशन जदीद औजार मशीन से लेजर जरिए इंडोस्कोपिक ओपन ऑपरेशन किया वे तो याद रखा रोजानो चकास अल्ट्रासाउंड फ्री में किया वे तो जैमें ऑपरेशन के केस फीस ना है वर्ती वींदी बस ऑपरेशन जो भी थोड़ो खर्च मसलन दवान कमरे की फीस मरीज पान दींदा डॉक्टर साजिद अब्बासी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी वेहण जो हंध मुमताज वेलफेयर क्लिनिक अलनिसा मेडिकल सेंटर सिटी चौक सचल कॉलोनी लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे तई आचर ते सुबह जो 12 बजे का शाम जो 4 बजे तई राबते के लिए मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334224186 9 खुशखबरी हाने अवाजी परेशानी खत्म लाड़काणे शहर जो माहिर डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद लंडन कराची खान तालीम याफ्ता MBBS गोल्ड मेडलिस्ट FCPS MRCP लंडन एसोसिएट प्रोफेसर कंसल्टेंट फिजिशियन चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाड़काणो खास माहिर मैदो आंडो अल्सर हेपेटाइटिस ABCDE जलंधर या कारो कामुन शुगर हाई ब्लड प्रेशर मथे चेल जोड़न जो सूर रगुन जो सूर TB दम बियों फिफड़न गुर्दन जो बीमारियों क्लिनिक कराची मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर नज़द घंटी फाटक लाड़काणो मुआइने जो टाइम शाम जो 3 बजे का रात जो 9 बजे ताई आचर सुबह जो 9 बजे का मंझन जो 4 बजे ताई डॉक्टर शेख खालिद मोहम्मद राबते के लिए 0333-261-9052 अपॉइंटमेंट के लिए मोहम्मद रफीक सरगाणी मोबाइल नंबर 0332031-7311
11: अनीसा खैर तो आहे मंडकाए तो घुमे धक लगो तई छा
10: हां ओ यार अब्दुल्ला एक्सीडेंट में जंघ जो हडो भड़ी पियो तोखे तो खबर आ गरीबी हाल आ पैसा भी कोनन के सोचा तो ऑपरेशन किथा कराया
9: भाऊ परेशान न थी लाड़काने में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो इलाज भी एड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी विंदे गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो हडन जोड़न जो माहिर सर्जन कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो इतने रोजानो हडन जोड़न के मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वने थो जैमें रोजानो चकास मुफ्त रिपोर्टों 40% फ्री एक्सरे 40% फ्री ऑपरेशन में डॉक्टर जी का भी फी न आहे असां वट हडन जोड़न जो सूर संदन जो सूर कुन रग जो सूर यूरिक एसिड चेल जो सूर शुगर जा फट हथन पेरन जो सुन थियण पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घंटी फाटक लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई आचर ते सुबह जो 10 बजे का शाम जो 3 बजे ताई छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी राबते के लिए मोबाइल नंबर 0315879417 0333-7540-661 शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काणे जो तरबियत याफ्ता डॉक्टर सुहेल अहमद चन्ना MBBS MS कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाड़काणो इतने छिन कब्जी मौका यानी बवासीर नवासीर फिस्टुला हाइड्रोसेल पिते की पथरी सोज अपेंडिक्स जो ऑपरेशन चीर का बगैर चर्बी जा गोढ़ा शुगर के करे खराब थियल जख्म बुकी में पथरी नंढे वडे आंडे जा मसला छाती जा गोढ़ा कैंसर या गुदू जो ऑपरेशन नई तर्ज जदीद मशीन जरिए कयो वने थो डॉक्टर सुहेल अहमद चन्ना ऑपरेशन जो माहिर सर्जन एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घंटी फाटक रोड लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 9 बजे ताई आचर ते सुबह जो 10 बजे का मंझन जो 3 बजे ताई राबते के लिए 0331-305-3749 याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते 12 बजे का शाम जो 4 बजे ताई मेहड़ शहर में मुमताज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तरफा मुफ्त चका सकंदा एड्रेस लग हाई स्कूल नंबर 1 VIP रोड मेहड़ खुशखबरी लाड़काने शहर जो मशहूर मेडिकल जे दुनिया जो वड़ो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हिते हडन जोड़न जो सूर कुन रग जो सूर वाई चेल जो सूर वडी उम्र जे माण्हुन नंढन बारन में हडन जोड़न जा मसला फ्रैक्चर फिरियल पेरन जंगुन के ठीक करण हडन जोड़न जे हर किस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनन जरिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर हडन जोड़न जो माहिर सर्जन टाइम आचर खां जुम्मो रोजानो सुबह जो 11 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं एड्रेस बैतुल शफा बोन ट्रामा क्लिनिक लखनऊ देरो चौक लाड़काणो। याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिनि। एड्रेस सखर टाउनशिप आरएफ बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर। टाइम मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0336684025 ऐं फोन नंबर 0744057199।
12: सुना साईं कुछ खबर अथव?
13: छा थियो सोणी?
12: बिन्हीं खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
13: सोणी हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
12: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
13: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
12: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
13: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो। असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे।
9: हाणे सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर UPS इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरीअ में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिणु लॻाया वञनि था।
13: तशरीफ़ आणींदा सरगोदा बैटरी सर्विस म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो। राब्ते जे लाइ मोहम्मद फारूक मोबाइल नंबर 0315-68-299-24।
14: हाणे मां वधीक रक्षण जा धिका नथी खाई सघां, गाॾी छो नथो वठी?
15: रिदा, गाॾी वठण को सवलो कमु कोन्हे ऐं मूंखे ड्राइविंग किथे ईंदी आहे?
14: इन्हनि ॿिन्हिनि मसलनि जो हल आहे अलकासमिया कार शोरूम ऐं कार ड्राइविंग स्कूल लाड़काणो।
16: जी हाँ, अलकासमिया कार शोरूम ते नए नए पुराणी गाॾियुनि जी ख़रीदो फरोख कई वेंदी आहे। अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल ते ड्राइविंग जी सिख्या सां गॾु इंजन जी मालूमात, रोड सेंस, हाईवे ऐं मोटरवे बुक जी मालूमात पिण ॾिनी वेंदी आहे।
14: नंढियुनि ऐं वॾियुनि गाॾियुनि सां गॾु आटो ऐं मैनुअल गाॾियूं पिण सिख्या जे लाइ मौजूदु आहिनि।
16: अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल, एड्रेस स्टेशन रोड लॻ सपना होटल घिटी लाड़काणो। अलकासमिया कार शोरूम, अलकासमिया कार शोरूम ते नए ऐं पुराणी गाॾियुनि जी ख़रीदो फरोख कई वेंदी आहे। गाॾियुनि जे कागज़ात जो कमु ट्रांसफर फाइल वेरिफिकेशन CPLC टैक्स क्लियर कयो वेंदो आहे। अलकासमिया कार शोरूम, एड्रेस राइस कैनाल रोड दुबई कार वॉश लाड़काणो। राब्ते जे लाइ शकील अहमद मौर्यो मोबाइल नंबर 0300-3436-498 ऐं 0331-342-6498।
17: It's 3:15 PM.
18: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
19: खुश खबरी ए टू जेड यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काने ते अवां के हर शे मिले हिक ही छत हेठा। अवां के आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे, मजबूत स्टाइलिश स्कूल बैग्स या पायदार शूज, ए टू जेड यूनिफॉर्म ते मिले अवां के यूनिफॉर्म स्कूल बैग्स शूज ऐं बियो स्कूल जे ज़रूरत वारो सामान बाज़ार खां इंतहाई घटि क़ीमत में। कोई देर छा जी, अॼु ई अचो असां जी ख़ुसूसी ऑफर्स जो फ़ाइदो हासिल करियो, ताकि अवां जा ॿार रहनि स्कूल जे लाइ हमेशा तयार ऐं मुतमिन। एड्रेस ए टू जेड यूनिफॉर्म GPO रोड लाड़का। राब्ते जे लाइ मैनेजर वकार अली, मोबाइल नंबर 0313117576।
10: खुशखबरी लाड़काणे जो मशहूर ऐं मेडिकल जी दुनिया जो वॾो नालो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी MBBS FCPS DOMS सदारती गोल्ड मेडलिस्ट अखियुनि जे परदे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन। हिते अखियुनि जे बीमारियुनि रेटिना यानी अखियुनि जो परदो, कारो पाणी, मोतियो पाणी, उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे परदे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीननि सां कयो वञे थो। जिनाह अस्पताल कराची, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गुलाम अहमद मेडिकल मेडिकल कॉलेज सखर ए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काने जो अगुणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी अखिन जे पर्दे ए बीमारन जो माहिर हेको सर्जन इंडस हॉस्पिटल लग लेडीज जेल रोड लाड़काणो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 9 बजे तई अंगारो खमीस आचर ते सुबह जो 10 बजे का मंझंद जो 2 बजे तई याद रखंदा जुमे जे दिन क्लिनिक बंद रहंदी राबते लाए मोबाइल नंबर 03003410560 03173276619
20: अजरक के रंगों से रंगी
21: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
20: सिंध के दिल से निकली आवाज
21: GFM 88 नेटवर्क

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM फकीरी।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न बधन मर्दन औरतुन में वजन जो न बधन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

फिनिश हो जाएंगी। तो जनाब ये था एक छोटा सा टोटका जो आपके हेयर फॉल का बेहतरीन सलूशन है। हमारे इधरा वैसे बहुत से लोग कम नहीं है जो बाहर निकलने वाली खवातीन को छेड़छाड़ करते हैं, इनका जीना हराम कर देते हैं, चाहे वो स्कूल या कॉलेज के कोई स्टूडेंट हो या फिर मुलाजमत करने वाली लड़की या फिर घर का सौदा सल्फ लेने वाली खवातीन। ऐसा ही एक वाकया जो है पेश आया भारतीय शहर मुंबई में, वहाँ एक लड़की को तंग करने वाले लड़की ने ऐसी सजा दी कि ये सुनने के बाद शायद बहुत से लड़के जो हैं वो लड़कियों को तंग करना छोड़ दें। ये वाकया पेश आया एक मुसाफिर बरदार ट्रेन में बम्बई में, जहाँ एक नौजवान ने मुबैना तौर पर खातून से बदतमीजी की, नाजेबा रवैया इख्तियार किया। तहम मस्कूरा खातून ने उसे डरने के बजाय साथी मुसाफरों की मदद से उसको काबू किया, उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाकर उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाई। और ये वीडियो जो है ये तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें खातून को नाजेबा रवैया इख्तियार करने वाले शख्स की मुनफरिद दुर्गत बनाते देखा जा सकता है। और इस वीडियो पर दो मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। सार्फिन का एक बड़ा तबका खातून की हिम्मत को सराहते हुए कह रहा है कि लड़की ने हेरेसमेंट पर खामोश रहकर उसे सह जाने के बजाय मज़ाहमत की और दीगर लड़कियों को यही पैगाम दिया कि ऐसी हरकत करने वालों को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करने चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए।

अक्सर हमें मालूम होता है कि हमारा मूड क्या है, हम क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो सब कुछ बिल्कुल सुनना नहीं चाहते जो हम सुनते आ रहे होते हैं, यानी अचानक अपनी पसंद बदल कर देखते हैं। तो इसके लिए स्पॉटिफाई से कहीं ऐसे फनकार प्ले करो जिन्हें मैंने पहले नहीं सुना, और मजीद हिदायत देना चाहें तो देकर इस माहौल और अंदाज को मजीद तरतीब देते जाएं। आप कह सकते हैं कुछ बैड बनी भी शामिल करो, फिर उसे महदूद करने के लिए कह सकते हैं सिर्फ इसके हालिया गाने चलाओ या इससे ज्यादा पुरजोश बना दो, और जब आपको कुछ पसंद आ जाए तो स्पॉटिफाई से कहें कि ये गाना महफूज कर लो, या इसे मेरी फहरिस्त में शामिल कर दो, या इस फनकार को फॉलो करो, वगैरह वगैरह। अगर आप अपने पसंदीदा गाने, एल्बम, फनकार या सिंफ के बारे में जानना चाहते हैं तो नाउ प्लेइंग व्यूज से पूछेंगे ये एल्बम कब जारी हुआ था या ये किस तरह की मौसीकी है, और स्पॉटिफाई आपको मजीद पसे मंजर फराहम कर सकता है, मुतालका फनकारों, आवाजों, कहानियों तक ले जा सकता है जो मौसीकी और इसके तख्लीकी अमल को समझने में आपकी भरपूर मदद करेगा। और ये तजर्बा सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनते हुए आप उसके पसपर्दा लोगों, कहानियों, ख्यालात के बारे में भी पूछ सकते हैं, मसलन इस मुसन्निफ ने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, या ये मेहमान और किन पोस्ट पॉडकास्ट में

0: हर पहर जिंदगी की लहर टाइम टू
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

0: और जनाब आपकी कॉल्स की जानी मूव करेंगे, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम गुलाल अजीज सोलंकी गला है ठिकाना पड़ गया।
0: अदा वेलकम कहेंगे आपको एक दिन के लिए, आपको आपके दोस्त का दिमाग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? चले ठीक है, दोस्तों को याद कर लें। ठीक आदा सबनी पारा। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपका, आपको एक दिन के लिए अपने दोस्त का दिमाग मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप चेक करेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ऑप्शन नंबर टू फौरन वापस कर देंगे, ये ऑप्शन नंबर थ्री उसे अपडेट करेंगे, ऑप्शन नंबर फोर रिसेट कर दूंगा। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अदी।
0: वेलकम कहते हैं जनाब, कौन बात कर रहा है?
2: अदी कुर्बान अली कास्केली को बनाया वो ताज गुलाम कास्केली लगी झंडो मरी गया।
0: अदा अगर एक दिन के लिए आपको अपने दोस्त का दिमाग मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगी?
2: मशवरा वठना अदी।
0: चले ठीक है, दोस्तों को याद करें।
2: मशवरा वठना अदी, कोई दोस्त है ना?
0: जी
2: काटड़ी का गुलाम रसूल मरी अजीज सोलंगी लखालिक लाशाड़ी यही झूठी तरह का गुलाम रही बलोच का चिक्के दोस्तों बुतन का सफर सलाम।
0: ठीक है ओके। और जनाब आज हम आपसे पूछ रहे हैं अगर आपको एक दिन के लिए आपके दोस्त का दिमाग मिल जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्या जो है रिएक्शन होगा, आप देखेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर उसे फौरन वापस कर देंगे, अपडेट करेंगे या फिर आप कहेंगे कि रिसेट करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहेंगे अली रजा लगारी आपको, अगर आपको एक दिन के लिए अपने दोस्त का दिमाग मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अच्छा आपके दोस्त जो है उसके जो वर्डिंग है वो आप जो है लेना चाहेंगे?
3: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दोस्त बुद्धि रहन खालक लाखर के सलाम पर अमीर बेश मरी के सलाम आर के गुलाम मुस्तफा काल पर जदम आज मंजू सखिया ने पुत के लेके जो बरस साफ की विनल लिखी यो गीत के लेके जो रेडी के सब्र समापन लिखी।
0: कोशिश करते हैं आपको बरसाती सॉन्ग

अमेरिका जा ईरान ते यारहें ॾींहं बि हमला। ईरानी शहर तहरान, तबरीज, सिरक ऐं ॿियनि सामूंडी इलाइक़नि खे निशानो बणायो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब ताज़नि हमलनि जो मक़सदु ईरान जे बहिरी जहाज़नि ख़िलाफ़ सलाहियतुनि खे कमज़ोर करणु हो। ईरानी फ़ौज जा बि जवाब में अमेरिकी ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते हमला। पासदारनि इनकलाब मूजिब उर्दन ऐं बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि खे ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिंजे नतीजे में अमेरिकी फ़ौज जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान जे दौरे ते मौजूद ईरानी घर वज़ीर इस्कंदर मोमनी जी घर वज़ीर मोहसिन नकवी सां मुलाक़ात। ॿितरफ़ा लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। अफ़गान सरहद तां मंशियात ऐं दहशतगर्दी रोकण जे लाइ गॾियल मौक़िफ़ इख़्तियार करण ते ज़ोर भरियो वियो। सहकार खे वधीक बहितर करण जे लाइ कोआर्डिनेशन वधाइण जो बि फ़ैसिलो। मोहसिन नकवी चयो त पाकिस्तान समूरनि शोबनि में ईरान सां सहकार वधाइण जे लाइ तयारु आहे। ईरान जे परे वज़ीर ऐं घर वज़ीर अमन जे लाइ बहितरीन कमु कयो आहे। जल्द अमन जे क़याम जे लाइ पूर उमीद आहियूं। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी वॉशिंगटन में अमेरिकी हमन सभु सां मुलाक़ात। वापारी सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़, सीड़पकारी ऐं बरामदात वधाइण ते ज़ोर भरियो वियो। नाणे वारी वज़ारत मूजिब मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिकी हमन सभु स्कॉट बेंसेट सां मुलाक़ात कई आहे। नाणे वारे वज़ीर अमेरिकी हमन सभु खे रोट मार्केट हिकमत अमली जे लाइ सहकार जी दरख़्वास्त कई। मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान में अमेरिकी सीड़पकारी में वाध ऐं स्ट्रेटेजिक मनसूबनि खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवायूं, 10 दहशतगर्द मारिजी विया, 2 बम्बार औरतूं गिरफ़्तार। ISPR मूजिब हिंदुस्तानी फितने ऐं ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ॻुझे इतला ते कार्रवायूं कयूं वियूं। बलोचिस्तान जे ज़िले सोराब में फोर्सिस जी कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। मसाऊ ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। भारतीय फितने जी 2 आबघाती बम्बार औरतुनि ऐं सहूलतकार खे बि गिरफ़्तार कयो वियो।

0: पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तेल जे घर में रोजानी फेरफार करण वाले फैसले के रद्द कर छोड़ो। सुभाने 24 कलाकन के लिए पेट्रोल पंप्स बंद करने जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अगवान है तो पेट्रोल पंप सुभाने सुबह 6 बजे का जुमे जो सुबह 6 बजे तक बंद रहंदा। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स का मसला हल करने के लिए तैयार ना है। रोजानी बुनियाद से पेट्रोल अघन में फेरफार वो फैसलो बेकबूल ना है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: डिस्ट्रिक्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर।

जनाब ये तो कुछ इन्फो जो कि मैंने आपसे शेयर की है, इसलिए रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आगही हो और आप इसका अपने खानों में इस्तेमाल करें और इसे मुफीद हो यानी फायदा उठा सकें। कुदरत की पेश करदा एक बहुत ही बेशकीमत नेमत है ये, और आपके किचन में लाजिम व मलजूम होना है इसका मौजूद होना। अक्सर कहती हैं गुम नहीं थी मैं, तबीयत ठीक नहीं थी, अपनी ख्याल रखिए हेल्थ का अक्सा, और अब तो अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छी बात है कि आपकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। अगर फ्रेंड का दिमाग हो तो रीसेट करूंगी, बहुत चलता है। ओके थैंक यू अक्सा।

और ये कि मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको सेगमेंट रिवर्स गियर में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाऊंगी. इससे पहले मैंने आई थिंक ये वाला सॉन्ग प्ले नहीं किया है. तो ये वाला गीत जो है बहुत ही प्यारी पसे पर्दा फीमेल सिंगर यानी पसे पर्दा गुलुकारा, और गुलुकारा को आप नसीबो लाल के नाम से जानते हैं. उनका एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, प्यारा सा गीत आप सबके लिए. आपने एंजॉय करना है इस ट्रैक को. ट्रैक के बाद होगा एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपको शामिल प्रोग्राम करेंगे. स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून जी एफ एम 88 नेटवर्क.

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो 15688 आपकी कॉल से हमले प्रोग्राम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: आपके सवाल का जवाब है पंजाब.
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया. मैंने शहर का नाम पूछा था, आपने सूबे का नाम बताया है. नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम भाजी.
0: वेलकम कहेंगे भाई, कौन बात कर रहा है? अदा, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कपास का दिल कहलाता है?
2: मुल्तान भाजी.
0: अरे वाह, जबरदस्त, राइट आंसर है अदा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. और जनाब, हमें राइट आंसर मिल चुका है, मुल्तान राइट आंसर है. तो जनाब, हमने पूछा था पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कपास का दिल कहलाता है, मुल्तान राइट आंसर था. सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे लंबी मुसाफिर ट्रेन किस मुल्क में चलती है? सबसे लंबी मुसाफिर ट्रेन किस मुल्क में चलती है? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है, आपने डायल करना है 03133661568 और मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MPK, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है अपना SMS 8881 पर.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क फकीरी
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

की कोशिश करने लगती थी, पर जूं जूं मैं पर जाती थी, दूसरों की समझदारी का मयार मजीद ऊंचा होने लगता था। फिर मैं थक गई इतना कि समझदारी के ऊंचे मयार को सर उठा के देखने से भी गुरेज करने लगी। अब डर सा लगता है।

0: होने पर अपने समझदार ना होने पर अपने पागलपने के साथ मजीद किसी समझदार नहीं
1: लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहते हैं

सॉन्ग्स प्ले करेगी और देखो कर दिए ना। हेलो, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं, इससे आपको सरोकार नहीं होना चाहिए, आप

0: मैं चाहता हूं कि कश्मीर के नुमाइंदगी आपकी ऑब्जर्वर स्टेटस पाकिस्तान का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी आपको बिठाना चाहिए। और हां, मैं ये भी चाहता हूं कि आजाद कश्मीर के ऑब्जर्वर्स, मीरपुर का ऑब्जर्वर, कोटली का ऑब्जर्वर, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आपका ऑब्जर्वर मुंतखब नुमाइंदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी बैठे, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में भी बैठे, सड़कों पे एहतजाज करने के बजाय, धरना की सियासत करने के बजाय, आप खुद अपना आवाज पाकिस्तान के वफाक में अपने लिए उठा दे, ये मेरा मंशूर है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि जहां तक हके मलकियत का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ, चाहे वो सुबह सिंध हो, सुबह बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, एक ही कि आपका हक है, अवाम का हक है, मुकामी लोगों का हक है, किसी और का हक नहीं। ये पहाड़, ये सरजमीन, ये दरिया, ये सब आपका है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
4: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
6: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राबते जिले आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।

subscribe now and press the bell icon.

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: हर फोरम ते तव्हांजी नुमाइंदगी करे कश्मीर जे माण्हुनि खे एनएफसी जे फोरम में बि ॾिसण
2: चाहियां
1: थो। पंजाब सिंध न पर कश्मीर पाण कंदो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो त कुझु माण्हुनि जे ग़लतियुनि जी सज़ा सॼे कश्मीर खे न मिलणु घुर्जे। 14 ॾींहनि ताईं आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंदि करणु बदतरीन सज़ा आहे। हू चाहे थो रोडनि ते एहतजाज बदिरां आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जी नुमाइंदगी हर फोरम ते थिए। तव्हां फ़ैसिलो कंदड़ केरु थींदा आहियो त कश्मीरी केरु आहिनि? काल्ह हिकु पार्टी जे क़ाइदे ते ख़िताब कयो पर अफ़सोस आहे त नगोणे वज़ीर आज़म ऐं न वरी वज़ीर आला पंजाब पंहिंजे वज़ीर जे बयान जी मज़म्मत कई।

इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो 2026 की शुरुआत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कदे पाकिस्तान के रोबोटिक्स एआई जो इलाकई मरकज बण हुकूमत जो अज़म है। टेक्नोलॉजी ए खुदमुख्तार सिस्टम्स माशी तरक्की लाए अंटर आहिन, जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। फील्ड मार्शल की क्यादत में हथियारबंद फौज जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार कई है। बहरी मफादन के निशानों बनाया वो तो दिफा जा समूरा हक इस्तेमाल कया वा। पाकिस्तान यमनी हुसैन के खबरदार कर छो। रेड सी में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी वारे धमकियों की भी मजम्मत। विच ओवर में जारी छिकताण से सऊदी अरब के शामिल करण वारे कोशिशों से भी गणती जाहिर। सऊदी अरब की सलामती खुदमुख्तारी वारे अजम जो वर्जाओ परेही खाते है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजन तोड़ी बहरी मफादन खिलाफ कदमन के पाकिस्तान की कौमी सलामती खुद मुख्तारी खिलाफ संगीन खतरो समझो वो जो आलमी कानून मूजिब भरपूर जवाब दिनों वो। सऊदी अरब के व्यापारी सरगर्मियों बाबत धमकियों भी कबूल जोगियों ना। अमेरिका खत्े में जंग न तो चाहे। वॉशिंगटन गाल तैयार है पर तेहरान संजीदा ना है। मनीला में मीडिया से गाले अमरीकी परे वजीर मार्को रोपियो है आपने हरमुस में बहरी जहाजन जो दिफा कर रहा हूं। ईरान खत्े में बदमनी के हथी दई रो है। ईरान के अपनाए हरमुस से कंट्रोल की इजाजत नहीं दई सकते। ईरान से तकरार जो सिफारती हल चाहूं था। यूक्रेन जंग के खात्मे लाए अमरीका अहम किरदार अदा कर रो है। आसियान इजलास में शिरकत तय फिलिपाइन के शहर मनीला पौतल नायब वजीर आजम साग डार की रूसी परेही वजीर से मुलाकात। वितरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बिन्हीं अगवाणन जो पाक रूस लागापन के मजबूत बनाने खिते की सूरत हाल से रबतन में रहने से तफाक़।

0: अमेरिका जा ईरान ते यारहें ॾींहं बि हमला। ईरानी शहर तेहरान, तप्रेस, सिरिक ऐं ॿियनि समूंडी इलाइक़नि निशानो बणायो पियो। अमरीकी सेंटका मूजिब ताज़नि हमलनि जो मक़सदु ईरान जे बहिरी जहाज़नि ख़िलाफ़ सलाहियतनि खे कमज़ोर करणो हो। ईरानी फ़ौज जा बि जवाब में अमरीकी ख़िते में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते हमला। पासारनि इनकलाब मूजिब उर्दन ऐं बहिरेन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि खे ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिंजे नतीजे में अमरीकी फ़ौज जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान जे दौरे ते मौजूद ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमिनी जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात, बितरफ़न लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। अफ़गान सरहद तां मलेशियात ऐं दहशतगर्दी रोकण लाइ गॾियल मौक़िफ़ अख़्तियार करण ते ज़ोर भरियो वियो। सहकार खे वधीक बहितर करण लाइ कोआर्डिनेशन वधाइण जो फ़ैसिलो। मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान समूरनि शोबनि में ईरान सां सहकार वधाइण लाइ तयारु आहे। ईरान जे परॾेही वज़ीर ऐं घरू वज़ीर अमन लाइ बहितरीन कमु कयो आहे। जल्द अमन जे क़याम लाइ पुर उमेद आहियूं। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी वॉशिंगटन में अमरीकी हमनसब सां मुलाक़ात। 10 अरब डॉलर जी एक्सचेंज सपोर्ट फैसिलिटी फराहम करण जी दरख़्वास्त। वापारी सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। नाणे वारी वज़ारत मूजिब मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी हमनसब स्कॉट बेसेंट सां मुलाक़ात कई आहे। नाणे वारे वज़ीर अमरीकी हमनसब खे रोड टू मार्केट हिकमत अमली लाइ अमरीका खे सहकार जी दरख़्वास्त कई आहे। सीड़पकारी वधाइण लाइ बि चयो आहे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाइयुनि में 10 दहशतगर्द मारिजी विया। ॿ बमबार औरतूं गिरफ़्तार। ISPR मूजिबि हिंदुस्तानी फितने ऐं ख़ारिजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ गुझे इतलाउ ते कार्रवाइयूं कयूं वयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4 56 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: दोस्त व्यूज तव्हां ते पहुचाईंदासीं जेके मौजूदु आहिनि, छो जो जेको माण्हू सिहतमंद थी वेंदो आहे यकीन हुन जी बि हिकिड़ी ख़्वाहिश हूंदी आहे, उहे पाण बि चवंदा आहिनि त असांखे अलाह ताला जे तरफ़ां हिकिड़ी शिफ़ा मिली आहे, त जीअं ॿियनि खे अवां इहो नोट करायो ॿुधायो त जीअं असांखे उहो असांजो मैसेज ॿियनि ताईं पहुचे त उहे बि जेको आहे सो उन मां फ़ाइदो हासिलु कनि। ऐं अचो त उन जा व्यूज़ ॿुधूं था।
1: साल थी विया जेकी तव्हां मुख़्तलिफ़ किथां किथां इलाज
2: करायो?
1: जी जी, लाड़काणो मेरापुर चमड़ी जे डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो ऐं ॿियनि डॉक्टर खे तव्हां ॾेखारियो ऐं ॿियनि डॉक्टर
0: सम्झां थो। डॉक्टर साहिबु, असां वटि उहो जेको आहे त असुल में पियल आहे हुन ते नेट ते पियल आहे, एफ बी ते पियल आहे, इन जे करे उहो इंटरनेट सिलो जे करे मसालो पेश अचे पियो। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था 0301-2196-8051 0301-2196-8051।

0: चंदमा अगवा कयल 25 खां वधीक ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ सिंध पुलिस जो हिक बि वाइदो वफ़ा हैदराबाद में वाइदो हुआ ऐं कराची में 3 तलवार वटि धरणा लॻी विया। प्रिया एक्शन कमेटी जे सटे लॻायल धरणनि सबबि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल। कश्मोर में डेरा मोड़ ऐं उबावड़ो में कमू शहीद वटि बि धरणनि जो ऐलान थियल। प्रिया एक्शन कमेटी जो चवणु आहे त 27 ॾींहं गुज़रनि बावजूद मुतालबा न तस्लीम कया विया त पुलिस 3 ॾींहनि जी मोहलत वरिती। 5 ॾींहं थी विया आहिनि पर अञा ताईं हिकु बि ॿार बाज़ियाब न थियो। मजबूर थी रोड बंदि कया आहिनि। प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी बाज़ियाबी ताईं धरणा जारी रहंदा। आज़ाद कश्मीर जा माण्हू पुराणी पघार ते कम करण लाइ तयार न आहिनि। आज़ाद कश्मीर जो हिकु परॾेही वज़ीर हुजे जेको हर फोरम ते तव्हांजी नुमाइंदगी करे। कश्मीर जे माण्हुनि खे नफ़्सी जे फोरम में बि ॾिसण चाहियां थो। हाणे कश्मीरियुनि जो फ़ैसिलो पंजाब या सिंध न पर कश्मीर पाण कंदो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो त कुझु माण्हुनि जे ग़लतियुनि जी सज़ा सॼे कश्मीर खे न मिलणु घुर्जे। 14 ॾींहनि ताईं आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंदि करणु बदतरीन सज़ा आहे। हू चाहे थो रोडनि ते एहतजाज बदिरां आज़ाद कश्मीर जे माण्हुनि जी नुमाइंदगी हर फोरम ते थिए। तव्हां फ़ैसिलो कंदड़ केरु थींदा आहियो त कश्मीरी केरु आहिनि? काल्ह हिकु पार्टी जे क़ाइदे ते ख़िताब कयो पर अफ़सोस आहे त न अॻोणे वज़ीर आज़म ऐं न वरी वज़ीर आला पंजाब पंहिंजे वज़ीर जे बयान जी मज़म्मत कई।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह ऐं पाइप 2.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर

अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

सिंध मां हुआ कल 25 का वधे के बारन जी बासिया पिलाय चैन शहरन में धरना लगी हुआ बबरलो बाईपास वट कौमी शहरा ते धरनो जारी प्रिया एक्शन कमेटी जैसट ते कराची में तीन तलवार वट धरनो हयो हुयो हैदराबाद में वादू हुआ कौमी शहरा ते धरने सबब गाड़ियन जू कतारू लगी वयू सियासी समाजी अगवाण ए कारकुनन जी शिरकत मेहड़ में भी धरनो हणी इंडस हाईवे ब्लॉक के हो उजाला परवीन प्रिया कुमारी समेत समूरन बाड़न जी बाजियाबी जो मुतालबो प्रिया एक्शन कमेटी जो चवण है त एहतजाज के 27 दिन गुजरण बावजूद पुलिस बारन जी बाजियाबी लाए को कदम ना खो बार बाजियाब कराने बदरा थला आसरा देना पा वन बारन जी बाजियाबी तई धरना जारी रहंदा।

किपरो में पूर्व मुजामत ते कतल कियल नौजवान धीरू कूली जे वारिसन जो काल का लाश रखी धरणो जारी। एसएसपी सांगड़ धरणे के कुछ माण्हुन सियासत करार डेई छॾियो। गुज़िरियल रात नौजवान धीरू कूली के पूर्व मुजामत दौरान कतल कयो वियो हो। वारिसन जो काल का उमरकोट किपरो रोड ते धरणो जारी। कातिल जी गिरफ़्तारी ताईं एहतजाज खत्म करण खां इनकार। एसएसपी सांगड़ शाहनवास आचर चयो आहे त नौजवान कातिल जी गिरफ़्तार जल्द थींदा। कुछ मानू धरणो हणाए पेंजी सियासत चमकाए रहा है।

0: था असां तव्हांजी बिञाणी आहे, असांजी बिञाणी आहे, तव्हां इन जो नतीजो त कढो न। असां राजू में बि राज़ी हूं, असां हर ॻाल्हि में राज़ी हूं, माफ़ी घुरूं त असां माफ़ी ॾियण लाइ बि तयारु हूं, पर मूंखे न्याणी त मिले न। कम से कम हिकिड़ो दुख आहे, हिकिड़ो सूर त वञे न, असांजे दिलि मो त वञे न। हिकिड़ा ॿार वेंदा आहिनि गुम थी, हुनजी काई ख़बर न पवंदी आहे त ॿार काॾे आहे, केरु खणी वियो। असां हुननि त एतिराफ़ कयो आहे, उहो बि अमीरनि सां एतिराफ़ कयो अथनि, पुलिस ऑफिसर सां एतिराफ़ कयो अथनि, ॿियो इन खां वधीक प्रूफ सबूत कहिड़ो हुजे। हिन एस एस पी इहा ॻाल्हि कई त मां इहो मसइलो टारगेट आहे, इहो मां मसइलो हल कंदुमि। इन में कुझु ॾींहं लॻंदा, अमल कयां त नतीजो निकिरी ईंदो। उन सां गॾु आई जी सपोर्ट हुजेसि, डी आई जी सपोर्ट हुजेसि, रुकावट हाणे हुया न हुया, हाणे खसरी ख़बर पहुची वञे त हिन वक़्तु रुकावट आहिनि या न आहिनि। जो पुलिस खे पंहिंजे हिसाब सां कमु करणु छॾियऊं ऐं पुलिस सचाई कई त नतीजो निकिरी ईंदो।
1: थुलजे इलाइक़े घड़ी हसन मां 19 साल खे अगवा थियल 4 वरी जी फसीला सरकी पुलिस खे हिकु भेरो ॿीहर यादि अची वई। एस एस पी सां मुलाकात कंदड़ फसीला जे वालिद अब्दुल रज़ाक सरकी के टी एन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पुलिस खे जवाबदारनि जा समूरा तफ़सीली न आहिनि। हू पोइ जवाबदारनि ॾोह जो बि एतिराफ़ कयो हो। ॿियो कहिड़ो सबूत घुर्जे? पुलिस सचाई सां जांच कई त निगरी जो पतो पइजी वेंदो। इहा बि ख़बर पइजी वेंदी त फसीला जी बाज़ियाबी में सरदार रंडक आहिनि या न।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंधबा वाकियल पंजवीह खां वधीक ॿारनि जी पासे पिलाए चइनि शहरनि में धरणा लॻी विया। बकरलो बाईपास वटि क़ौमी शाहराह ते धरणो जारी। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल। प्री एक्शन कमेटी जे सॾु ते कराची में टे तलवार वटि बि धरणो जारी। हैदराबाद में वाधू वाह क़ौमी शाहराह ते धरणे सबबि गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। सियासी समाजी अॻवाणनि ऐं कारकुननि जी शिरकत। मेहड़ में बि धरणो हणी इंडस हाईवे ब्लॉक थियो वियो। पुलिस सां ॻाल्हियुनि बाद एहतजाज ख़तम। फ्री एक्शन कमेटी जो चवण आहे त एहतजाज खे 27 ॾींहं गुज़रण बावजूद पुलिस वारनि जी बाज़ियाबी लाइ को कदम न खयो। ॿार बाज़ियाब करण बदिरां ठल आसरा ॾिना पिया वञनि। ॿारनि जी बाज़ियाबी ताईं धरणा जारी रहंदा।
1: जीआईटी में अमल न पियो कयो वञे। असांजो पुरमन एहतजाज

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, महरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।

अगर कें भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराणो हुए उन राबो कह उन अलावा असा टैप वाली किस्त के मेमोरी कार्ड में तब्दील करी।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: टे पूरा थी रहा हाँ अमन मावर जो सवाल है अमड़ियों जो सवाल है उन्हें झोलिय खाली अस जैसी मावर के बार नथा मिलन तेसी ती ही रोड रस्ता सब ब्लॉक होंगा
1: सलो पालन का वी प्रिया कुमारी ला एतजाज जारी रखा गया है नहीं को हुकूमत के तरफा का अड़ी अगभराई थी है जो सजा बार बाजियात कर जीआईटी के मथा जीआईटी बैठन जैसे अमल न पो वे असो पुरमन एतजाज है कड़ी वजह।

चंदमा अख़वा ऐं गुमथियल पंजवीह खां वधीक ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ समूरी सिंध हिकु आवाज़। हिकु ई वक़्तु चइनि शहरनि में धरणा जारी। बबरलो बाईपास वटि क़ौमी शाहराह ते फिरिया एक्शन कमेटी जे धरणे सबबि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल। कराची में टे तलवार वटि सिविल सोसाइटी ऐं शहरियुनि जो धरणो जारी। शहरियुनि जो वॾे अंग में शिरकत। हैदराबाद में वाधू वाह वटि क़ौमी शाहराह ते धरणो लॻल। गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। जाम शोरो में बि इंडस हाईवे ते

0: पंहिंजे हिसाब सां कमु करणु छॾियऊं ऐं पुलिस सचाई कई त नतीजो निकिरी ईंदो।
1: तुलजे इलाइक़े गढ़ी हसन मां 19 साल अॻु अगवा थियल 4 वरियनि जी फज़ीला सरकी पुलिस खे हिकु भेरो ॿीहर यादि अची वई। एस एस पी सां मुलाक़ात कंदड़ फज़ीला जे वारिद अब्दुल रज़ाक सरकी केटीए न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पुलिस खे जवाबदारनि जा समूरा तफ़सील ॾिना आहिनि। हू पोइ जवाबदारनि ॾोह जो बि एतिराफ़ कयो हो, ॿियो कहिड़ो सबूत घुर्जे। पुलिस सचाई सां जांच कई त निगरी जो पतो पइजी वेंदो। इहा बि ख़बर पइजी वेंदी त फज़ीला जी बाज़ियाबी में सरदार रंडक आहिनि या न।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।